FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है मंगलवार, शक संवत 1948, आषाढ़ माह, 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा की विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच

0: कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

讯等。किसी की निंदा ना करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। उन कार्यक्रमों का लेखा जोखा जो अब से लेकर रात 11 बजे तक आकाशवाणी चंडीगढ़ से आपके लिए पेश किए जाएंगे, विविध भारती के कार्यक्रमों के साथ साथ। समाचार हम रिले करते हैं अपने दिल्ली केंद्र से। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 9:30 पर आज का अखबार कार्यक्रम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 10 बजे। 10:05 पर आप प्रोग्राम सुनेंगे सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम।

दिन में 11 बजे फोन इन प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको जिस विषय पर यह कार्यक्रम सुनवा रहे हैं वो विषय है वॉइस डिसऑर्डर्स। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर भानुमति और

दोपहर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रमों का विवरण 1:05 पर प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 1:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे शाम 5:30। 5:05 पर फिल्म संगीत, 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

शाम 6:30 पर अमृत बानी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। शाम 6 बजे रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो आकाशवाणी चंडीगढ़ से आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। झरोखा में आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 6:35 हुए हैं। अगला कार्यक्रम है श्री रामचरितमानस।

लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है।

सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज से हम शुरू कर रहे हैं एक श्रृंखला घुंघरू की तरह। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी संगीत प्रेमियों को राजेश जौहरी का नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम वो मंच है जहां आते हैं हिंदुस्तान के मूर्धन्य कलाकार। ये वो कलाकार होते हैं जिनके लिए संगीत न सिर्फ एक इबादत है बल्कि जिंदगी का दूसरा नाम भी। आज ये मंच सुशोभित है ऐसे व्यक्ति से जिनका व्यक्तित्व विविध विधाओं में बिखरा है और निखरा है। मैं परिचय दे रहा हूं हमारे देश और हमारे फिल्म

0: उद्योग के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन साहब का। दादा से जुड़े हैं वो गीत जो अपने जन्म से ही दीर्घायु पाते रहे। आपको याद है ना, घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं। फिल्म का गीत होने के बावजूद इस गीत का साहित्यिक तत्व आज भी सृजनकारों के लिए प्रेरणा है। जब दीप जले आना, एक डाल पे तोता बोले, तेरा मेरा साथ रहे, दूर है किनारा, राम तेरे गंगा मैली, हर हसी चीज का मैं तलबकार हूं, गीत गाता चल, और अनेक ऐसे ही गीत जो मन पटल पर दर्ज हैं। महान कलाकार रविंद्र जैन साहब का संगीत सरिता में होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विविध भारती में संगीत सरिता का होना। विविध भारती की ओर से, संगीत सरिता की ओर से दादा का स्वागत करते हुए मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार दादा।
1: नमस्कार राजेश, और संगीत सरिता में अवगाहन करने वाले तमाम श्रोताओं को नमन करता हूँ। राजेश का सवाल है कि मैंने दोनों पक्षों को कैसे संभाला, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने दोनों पक्षों को नहीं संभाला है, बल्कि दोनों पक्षों ने मुझे संभाला। गीत इस तरह बचपन से मेरी जिंदगी में शामिल हो गए कि मेरा परिवार साहित्यिक रहा है। मेरे पिताश्री संस्कृत के बड़े विद्वान थे और बड़े भाई साहब साहित्य को डील करते थे, साहित्य में साहित्य रत्न वगैरह कर रहे थे, और उनकी तमाम किताबें, उनसे रचनाएं सुनता रहता था, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा नहीं पढ़ सकता था, मुझे डॉक्टर की तरह से पढ़ने को बिल्कुल मना था, मेरी आंखों की रोशनी कम होने की वजह से, लेकिन सुनता रहा हूँ, उनसे घंटों बैठ के सुना है। और जहाँ जहाँ अंत्याक्षरी कहीं होती थी, वहाँ कोई अगर मैं मुझे कुछ याद नहीं आता था तो कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देता था, और वहाँ से ही ये जोड़ने का सिलसिला पंक्तियों का शुरू हो गया। और चूंकि अलीगढ़ का हूँ, इसलिए हिंदी और उर्दू और ब्रज भाषा तीनों जबानों का वहाँ संगम है, और उनका समावेश मेरे जीवन में बचपन से ही हो गया। चूंकि मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है विधिवत, और गायक बनना चाहता था, लेकिन इसमें मुझे संगीतकार बनाने में मैं आकाशवाणी को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि इस पे जो प्रोग्राम्स होते थे क्लासिकल के, वो सुन सुन के मैं ये समझ गया था कि मैं इनसे अच्छा नहीं गा सकता हूँ, तो मैं अपनी दिशा बदल दूँ, और कंपोजिशन का काम तभी से शुरू कर दिया मैंने। और इस तरह धीरे धीरे दोनों विधाएं मेरे साथ हो गई, संगीत और गीत। यूं भी अगर हम संगीत से गीत को निकाल दें तो संगीत सूना हो जाएगा, सिर्फ सा रह जाएगा, लेकिन साथ ही संगीत शुरू होता है, सा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सा पे मैं आपको आगे चल के एक रचना सुनाऊंगा जो शलज पे ही आधारित है। फिल्मी गीतकार में इस तरह बन गया कि जब कलकत्ते से यहाँ आया तो मेरे पास जो धुनें थी उन पे लिखने के लिए और कोई यहाँ के राइटर्स नहीं मिलते थे, गीतकार नहीं थे, जो मैंने टूटे फूटे बोल कहे हुए थे वही हमारे राशि प्रोडक्शंस वालों ने, सीपी साहब ने, राधे श्याम जी ने पसंद किए और उन्हीं को रिकॉर्ड कर लिया, और वो चूंकि चल पड़े तो मुझे गीतकार भी मान लिया गया।
0: दादा, संगीत और गीत की एक नई परिभाषा दी आपने, कितना उपकार किया आपने इस विधा पर। जैसा आपने कहा कि आपके घर में साहित्य का माहौल रहा, आपके पिताश्री, आपके बड़े भ्राता, उसका प्रभाव आप पर पड़ा, लोकधुनों का प्रभाव आप पर हुआ, आपने आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने और उससे प्रभावित होते रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बंबई में आए, आपका सबसे पहला गीत फिल्म उद्योग में और किस फिल्म के लिए, किसने गाया और किस तरह उस गीत का जन्म हुआ?
1: मेरा पहला फिल्मी गीत जो रिकॉर्ड हुआ वो हमारे हरदिल अजीज, और मैं ये कहूँगा कि आवाज के एकमात्र धनी आदरणीय रफी साहब, जिन्होंने 14 जनवरी 1972 में पहला गीत रिकॉर्ड किया मेरे लिए, शायद 71 था, एक साल में कहीं भूल रहा हूँ, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन गीत याद है मुझे। वो गीत नारी सीपी साहब की फिल्म सिलसिला है प्यार का शुरू करने जा रहे थे, जो एक शायर की कहानी थी, तो वो फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन वो गीत अभी तक यूं का यूं ही पड़ा हुआ है, वो गीत फिल्म में नहीं आया किसी में, लेकिन आपको मैं चाहूंगा कि उसका मुखड़ा सुना दूं,
0: जरूर,
1: ताकि लोगों को याद रहे, सनद रहेगी आकाशवाणी में।

0: और सचमुच ये सिलसिला तभी से चल पड़ा और आज तक आपकी सेवा में हूँ।
1: और इस तरह हमारे फिल्म उद्योग को रविंद्र जैन नाम का एक महान अध्याय मिला, एक महान संगीतकार और गीतकार मिला। अच्छा दादा, ये बताइए कि आपके ऊपर जैसे साहित्य का इतना प्रभाव रहा, लेकिन फिल्म की सिचुएशन पर गीत लिखना, एक गीत बनाना जो पर्दे पर बहुत सशक्त रूप से उभरे, वो एक अदा है, एक कला है। इस अदा और कला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
0: मेरा फिल्म में कंपोजिशंस का जो अपना मेरा ढंग है वो ये है
1: जी,
0: मैं पूरी कथा पहले सुनता हूँ, उसकी कहानी क्या है, चरित्र क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, किस प्रदेशी कहानी है, प्लेन्स की है, पहाड़ों की है, जमीन की है, गांव की कहानी है, उन करेक्टर्स के मैनरिज्म क्या हैं, उनके हाव भाव क्या हैं, तो मैं वहाँ से रविंद्र जैन को हटा देता हूँ और उसी कलाकार को जीता हूँ जो उस फिल्म में जो पात्र है।
1: वाह वाह, आपकी सफलता के बहुत आगे आकर एक गीत आपकी पहचान बन गया, जैसे मैंने शुरू में कहा घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। इस गीत का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या इस गीत का अभिप्राय है, इस गीत की बैकग्राउंड क्या है, इस गीत का आधार क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये गीत के बारे में बताएं और एक गीत सुनाएं।
0: ये मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि फिल्म सिलसिला है प्यार का सिलसिला बनाना चाहते थे और वो एक शायर की कहानी थी
1: जी।
0: तो शायर जो है फिलोसफर भी होता है, और बाद में तो ये गीत फिल्म चोर मचाए शोर में इसलिए लिया गया कि सबको बहुत पसंद था
1: जी,
0: शशि जी को पसंद था और हमारी जो हीरोइन है मुमताज उनको पसंद था, सीपी साहब को पसंद था। और ये इसका बैकग्राउंड जो आप जानना चाहते हैं वो ये, मैं जहाँ जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि कलकत्ते चला गया था, मैं शायद आपको नहीं बताया, कलकत्ता अलीगढ़ से जब मैंने वाकई शिक्षा संगीत प्रभाकर तक की करके
1: जी
0: कलकत्ता इसलिए किया कि मुझे बंगला म्यूजिक बहुत फैसिनेट करता था बचपन से, गुरुदेव की रचनाएं टैगोर की उनको जानने के लिए कलकत्ते गया। और ये एक उन्हीं की रचना का एक भावांश है जो आप सुनते हैं घुंघरू की तरह। तो ये सिर्फ एक मैंने उसमें से एक प्रेरणा ली, हमेशा मैंने कभी नकल नहीं करना चाहा, बल्कि प्रेरणा तो कोई ना कोई होती है,
1: कहीं ना कहीं सोच
0: जरूर होता है और आइडियल होता है हर एक का कुछ ना कुछ।
1: बिल्कुल,
0: ये एक उनकी रचना थी, मोन देवा नेवा अनेक कोरेछी मोरेछी हजार मोरने आमी नूपुरेर मोतो बेजेछी चौरने चौरने।
1: वाह वाह वाह,
0: तो किशोरदा ने गाया और बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये गीत गाया। किशोरदा को ढूंढने में बहुत टाइम गया, मुझे डेट नहीं देते थे, तो किसी ने कहा कि एक बार वो लड़का आया है कलकत्ते से, उसको तुम सुन लो, सुनो तुमको अच्छा लगे तो गाना। तो मेरी रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई थी 18 फरवरी को, ये सेकंड रिकॉर्डिंग थी मेरी। तो किशोरदा बॉम्बे लैब में सुबह 9 बजे आ गए, तब मैंने काम शुरू ही नहीं किया था, तब मैं भी पहुंचा ही था, तो कहने लगे रिकॉर्ड करने से पहले मुझे सुना दो तुम क्या गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। तो मैंने जब उनको मुखड़ा सुनाया तो अंतरा सुना ही नहीं, कहने लगे बस तुम आराम से अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बैलेंस करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, गाना मुझे याद करा दो और तुम्हारा गाना गा के ही जाऊँगा।

0: अपने संगीत से पत्थर नहीं पिघले न सही, बावरा मैं भी हूँ संगीत में बैजू की तरह।
1: वाह वाह।
0: पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
1: ये गीत तो रविंद्र जैन नाम के उस कलाकार का परिचय और उसका आध्यात्मिक अध्याय बन गया है। कौन चाहेगा आपसे विदा लेना, लेकिन समय है कि आपसे विदा ली जाए और कल फिर इसी कार्यक्रम में आपसे मिला जाए।
2: घुंघरू की तरह आज से आरंभ है इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आपने सुना सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत का पहला भाग।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, ये आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।
1: भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं रूपलेखा इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। कुमार बारा बंकुई ने इसे लिखा है और सजाद हुसैन का संगीत।

छोड़ सब्र का दामन कोई ये तैर न सके।

साथियों, आज के संगीत सफर में हम रूबरू होंगे उस फनकार से जिनकी धुनें कम सही लेकिन हर धुन अपने आप में एक अनमोल कृति है। आज हम सुन रहे हैं संगीतकार सजाद हुसैन के संगीत से सजे कुछ खूबसूरत और यादगार नगमे। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं रुस्तम सोहराब इस फिल्म का गीत सुरैया की आवाजों में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, सजाद हुसैन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: आइए अब आपको सुनवाते हैं संग दिल। इस फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और संगीत से सजाया है सजाद हुसैन ने।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: भी है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज हम याद कर रहे हैं सजाद हुसैन जैसे संगीतकार को। ये कैसे संगीतकार थे जिन्होंने कभी लोकप्रियता से समझौता नहीं किया। उनकी रचनाओं में शास्त्रीयता, मौलिकता और मधुरता का अद्भुत संगम सुनाई देता है। आइए अब सुनते हैं दोस्त फिल्म का ये गीत नूरजहां की आवाज में। शम्स लखनवी ने इसे लिखा है सजाद हुसैन की धुन।

खुमार बारा बंकुई का लिखा ये गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है सजाद हुसैन ने। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम हलचल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, रुखसाना फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, शकील बदायूनी की रचना, सजाद हुसैन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मल क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
4: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
4: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आज गीतकार आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत आपको सुनवा रहे हैं।

प्रेम कहानी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत के शब्दकार हैं आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

कर्म फिल्म का गीत अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गी।
2: आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्मों से लिए गए युगल गाने, और आज के गाने गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस अब से कुछ ही पलों में।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आप सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
5: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। भारत के लिए

0: गर्व के पल रहे हैं।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाटी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

प्रभु हो पतिन, तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही

हमारे जीवन में फूलों का विशेष स्थान है। पूजा पाठ, त्योहारों, विवाह समारोहों और शुभ अवसरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताज़ा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा,
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर।
4: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
5: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो, क्या तब भी?
6: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
5: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
6: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
5: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
6: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
7: प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र लोक।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत। भूत बंगला फिल्म से विशाल मिश्रा, नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें, कुमार के बोल प्रीतम का संगीत।

लव्यापा फिल्म का गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और जहरा खान की आवाजों में। इस गीत को लिखा था गुरप्रीत सैनी ने और तनिष्क बागची का संगीत था। आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म सत्य प्रेम की कथा से। अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजें, रोचक कोहली और अली सेठ ने इस गीत को लिखा है, गुरप्रीत सैनी और अली सेठी का संगीत।

सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

आइए अब आपको सुनवाते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म का गीत दिव्या कुमार, सुनिधि चौहान और इश की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल हैं, संदेश शांडिल्य का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और अब वक्त है एक अंतराल का।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे

0: फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक, मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पति पत्नी और वो, इस फिल्म वो दो। पति पत्नी और वो दो इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे बादशाह कृष मोंदल, किशोर मोंदल और इप्सिता की आवाजों में। इस गीत को लिखा है बादशाह और कुणाल वर्मा ने, बादशाह हितेन और देव सदाना का संगीत।

यारियां दो। इस फिल्म का गीत अब सुनिए यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर की आवाजों में। इस गीत को लिखा खलीफ और यो यो सिंह ने, संगीत खलीफ और यो यो सिंह का।

0: क्षेत्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: और लीजिए अब सुनिए तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं प्रीतम का संगीत।
1: तेरे

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: थैंक गॉड फिल्म का गीत सुनिए, योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में, रश्मि विराग की रचना, तनिष्क बागची और चमत्कार संगीत का संगीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 9:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
6: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आज का अखबार।
2: नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। आपसे लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। अखबारों से ली गई जानकारी जितनी भी इस प्रोग्राम में संभव हो सकती है वो आपसे शेयर करेंगे, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करेंगे इस प्रोग्राम में। तो पहले बात करते हैं भाई मौसम की, क्योंकि मौसम का जादू जो है वो हम सब पर तारी है। मानसून ने थोड़ी ब्रेक ले ली थी, अब ये कहा जा रहा है कि मानसून फिर से जो है सक्रिय हो गया है हरियाणा पंजाब में, और हिमाचल में तो ऑलरेडी मानसून ने अपने रंग दिखाए हैं। जम्मू कश्मीर में तो बहुत भारी जो है तबाही भी लेकर आया है मानसून। तो मानसून एक ऐसा सीज़न है दोस्तों, इस सीज़न के लिए बेसब्री से इंतज़ार भी किया जाता है, और जब ये आता है तो हम हुमा कर आता है और बहुत सारी मुसीबतें भी साथ लाता है, लेकिन कुल मिलाकर ये मौसम जो है सुहावना लगता है, इसका इंतज़ार पूरे बरस रहता है। तो ऐसे में इस मौसम में मानसून में बरसात में हमें बहुत सी बीमारियों का डर भी रहता है, जिसमें एक है डेंगू। और बरसात में ये सिलसिला शुरू होता है और जुलाई से अक्टूबर तक ये सिलसिला डेंगू का चलता है। अब डेंगू जो है आम तौर से जब किसी को डेंगू होता है, या डेंगू कहिए या डेंगू कहिए, जब किसी को होता है तो कुछ दिनों के बाद वो भला चंगा भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। इसके साथ साथ कुछ मामलों में ये थोड़ा खतरनाक मोड़ भी ले लेता है। उस खतरनाक मोड़ से बचने के लिए दोस्तों अब सरकार ने मंजूरी दी है एक ऐसी वैक्सीन को जो डेंगू वैक्सीन है। भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन 60 साल तक के लोगों को लगेगी, 4 साल से 60 साल तक के लोगों को लगेगी। असल में ये जापान की वैक्सीन है, क्यों डेंगा इसका नाम है क्यों डेंगा, और ये जापान की एक फार्मा कंपनी ने बनाई है। इसका नाम है क्यूडेंगा, जैसे कि हमने आपको बताया 4 से 60 साल तक के लोगों को ये लगेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में ये पहली डेंगू वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसे लगाने से पहले किसी प्री वैक्सीनेशन की टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, चाहे व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ हो या नहीं, ये सभी को लग सकेगी। ये डेंगू के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि 80.2

प्रतिशत तक असरदार है और अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को 84.1% से 90% तक ये कम कर देती है। तो भाई जो भी है ये कमाल की है, राहत भरी ये खबर है। डेंगू जब डराता है तो बहुत डराता है। ये एक लाइव वैक्सीन है, इसकी 0.5 ml की दो डोजेज त्वचा के नीचे दी जाती हैं, जिनके बीच 3 महीने का अंतर होता है। भारत में इसकी एक डोज की कीमत क्या होगी ये फिलहाल अभी नहीं पता चला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक डोज की कीमत अभी 3,000 से 6,000 रुपये के बीच है। दुनिया में जापान, फ्रांस, ब्राजील के पास ही डेंगू के खिलाफ अपनी वैक्सीन है। भारत भी स्वदेशी वैक्सीन बना रहा है और तीसरे फेज के ट्रायल अभी चल रहे हैं। फिलहाल जो जापान की ये वैक्सीन है इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो ये तो है स्वास्थ्य से संबंधी बात, आप भी मानेंगे कि राहत भरी ये खबर है। और अब बात करते हैं इस सीजन की यानी मानसून की। मानसून की फिर एंट्री हुई है पूरी चमक दमक के साथ। हिमाचल में चंबा में 3 जगह बादल फटे हैं, पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश हुई है। पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। हेमकुंड साहब यात्रा स्थायी तौर पर रोकी गई है। हम आपको ये भी बताएं कि मौसम विभाग ने आज हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। पंजाब और हरियाणा में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में भी भारी वर्षा और भूस्खलन का खतरा जताया गया है। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा के कई जिलों में कल हल्की से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो लाहौल स्पीति में केलांग का उदयपुर, पांगी और किलाड से संपर्क टूट गया है, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस मौसम में कुदरत पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन आप इस मौसम में अपने आप को संभाल कर रखिए, बस अपना ख्याल रखिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। हेडलाइंस में जंतर मंतर से संसद तक दिन भर हंगामा, करीब 20 साल बाद प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए, हर सड़क पर प्रदर्शनकारी, कहीं खाई लाठियां, कहीं फेंके पत्थर। जंतर मंतर से निकलते ही भीड़ में बदला काकरोच आंदोलन, ना रहा कोई नेता ना कोई निर्देश, सबकी अपनी चली। कांग्रेस जनता पार्टी से मिली सरकार, सभी मांगे सुनी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सौंपी सीजेपी ने अपनी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर चढ़ावे मामले में राजनीति ना हो, एसटीआई के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। त्रिपुरा से खबर है, फंदे से लटका मिला त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का शव। भारत अब ट्रेनी नहीं ट्रेनर बन गया है, कोची बना 25 देशों का नौसेना प्रशिक्षण केंद्र। ऑपरेशन सदरन रेडिनेस में शामिल हुए 25 देशों के नौ सैनिक। बंगाल में 1 सितंबर से बांग्ला भाषा में कामकाज अनिवार्य। रेबीज टीके की कीमत 7.5 रुपए बढ़ी, फेफड़ों की बीमारी की नई दवाई के दाम भी तय। निमोनिया की नई वैक्सीन को 5 साल तक मूल्य नियंत्रण से छूट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत की बढ़ती समुद्री ताकत, अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए अहम, ये बात ये दावा किया है यरूशलम पोस्ट में। भारत अब वैश्विक व्यापार की सुरक्षा में बड़ी ताकत बन रहा। कारोबार क्षेत्र से जुड़ी हेडलाइंस में 2030 तक 570 जिलों को नए निर्यात हब बनाने की तैयारी। सरकार के इस कदम से नए मुक्त व्यापार समझौतों का मिलेगा लाभ। देश का क्रूड आयात बिल जून तिमाही में 60% उछला और 9 बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि 5 महीने के उच्च स्तर पर। अब चलते हैं दोस्तों खेलों की दुनिया में। आज खेलों की दुनिया में अखबारों में विश्व चैंपियन स्पेन छाया हुआ है, इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं, तस्वीरें हैं। एक तस्वीर, फुटबॉल विश्व कप ट्रॉफी के साथ जीत का जश्न मनाते स्पेन के खिलाड़ी। स्पेन ने 16 साल बाद पहला और अब तक 2 विश्व खिताब जीते हैं। युवा जोश, जज्बा और खुद को साबित करने की जिद ने लिख दी स्पेन की विजय गाथा। लगातार 7 मुकाबले जीते हैं स्पेन ने, केवल 1 गोल खाया है और पूरे टूर्नामेंट में बनाया अपना दबदबा।

0: और 53 करोड़ की लागत से हुई राष्ट्रमंडल खेल की तैयारियां, एथलेटिक्स पर 21.5 और बॉक्सिंग पर 10 करोड़ खर्च, पंजाब यूपी में हो रही सबसे ज्यादा डोपिंग, वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं हिटमैन, रोहित की दो टूक, जब तक खेल रहा हूं शोर मचता रहेगा। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद एक म्यूजिकल नंबर आपके लिए प्ले करते हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम का सफर तय करते करते हम वहां आ पहुंचे हैं जहां घड़ी बता रही है कि 9:45 हो चुके हैं। सफर जारी है, अब बारी है गाने की।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन

0: की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: स्वागत है दोस्तों आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले पंजाब की बात करें, अखबारों में लिखा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कैबिनेट की आज बैठक, अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा, विधानसभा सत्र बुलाने की दी जा सकती है मंजूरी। खन्ना में मनरेगा कर्मियों का प्रदर्शन, पंचायत मंत्री की कोठी घेरने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग दिल्ली तलब। बहिबल कला गोलीकांड मामले में एसटीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल से की पूछताछ। सुखबीर बादल ने सरकार पर बोला हमला और कहा कि मेरे खिलाफ सबूत है तो करें गिरफ्तार। उच्च शिक्षा में पंजाब आगे है, छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से बाहर, शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय सर्वेक्षण में ये खुलासा, उच्च शिक्षा में बेटियां हैं बेटों से आगे। और मौसम की खबर है पंजाब के लिए कि पंजाब में अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार हैं। अब चलते हैं पंजाब के बाद हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 770 गौशालाओं को मिलेंगे ई रिक्शा। 7 दिन की सुस्ती के बाद हरियाणा में फिर लौटा मानसून, 48 घंटे में झमाझम बारिश और 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों के 20% आरक्षण का श्रेणी वार बंटवारा। पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी और अग्रोहा पर देश में सबसे ज्यादा खर्च, सिंधु घाटी हड़प्पा काल की सभ्यता के अंश मिले हैं यहां। और हरियाणा पुलिस ने 281 बिछड़ों को अपने परिजनों से मिलाया है, इस दिशा में हरियाणा पुलिस को एक बड़ी सफलता। पंजाब हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, कई विभागों में होंगी नियुक्तियां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट का ये फैसला। हिमाचल में मानसून का कहर, पांगी घाटी में बादल फटे, लाहौल से संपर्क टूटा और पुल बहा, अब भी भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल में आशा कर्मचारियों, नंबरदारों और पीजी छात्रों का मानदेय स्टाइपेंड बढ़ा और माता नैना देवी के अब YouTube पर लाइव दर्शन भी होंगे। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। अब यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
4: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?

0: बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
0: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
0: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। आज का अखबार प्रोग्राम में अब अखबारों में बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों। चंडीगढ़ में 22.6 मिलीमीटर बारिश, 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। आज आप जांच सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। 13,000 रेंट डिफॉल्टर्स के लिए CHB की OTS स्कीम की तैयारी। चंडीगढ़ सेक्टर 31 और इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के लाइट पॉइंट पर तेज रफ्तार एक SUV ने बुलेट सवार को मारी टक्कर, और इस टक्कर से उसकी हो गई मौत। चंडीगढ़ में सफर होगा सस्ता और सुरक्षित। अगस्त से ट्राई सिटी में दौड़ेंगी भारत टैक्सी। हर राइड पर चालक और यात्री का बीमा। 20 रुपए प्रति किलोमीटर से किराया शुरू होने की संभावना। चंडीगढ़ में 30 दिन में साइट संभालो वरना जाएगा वेडिंग लाइसेंस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम की सख्ती। 774 पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वालों को अंतिम नोटिस। चंडीगढ़ प्रशासन ने लागू किए संशोधित आवंटन नियम 2026। सरकारी मकान मिला तो 14 दिन में लेना होगा कब्जा, चूके तो 1 साल लिस्ट से बाहर। ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल में चंडीगढ़ के कचरा प्रबंधन की सराहना की गई। मेयर सौरभ जोशी ने कार्यकाल बढ़ाने की उठाई मांग। डड्डू माजरा मॉडल बना देश भर के लिए मिसाल। और जॉर्डन में चल रही प्रतियोगिता में एंजल यादव के बाद भारत को दिलाया दूसरा पदक। जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप में 78 किलो भार वर्ग में ईश रूप ने जीता कांस्य। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: आज का अखबार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार अपने साथ ही अनिल पुंज के साथ। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107।

0: इंडियन स्टैंडर्ड्स।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: आज का अखबार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार अपने साथी अनिल पुंज के साथ। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजे ही अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी को सम्मानित करने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी भेंट करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
7: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
6: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और आपसी संबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की स्वीकृति दे दी है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का

0: अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सियाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भारतीय चुनौती रखेंगे। ओलंपियन तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋतुगा शिवानी गड्डे मिक्स डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: सूट, साड़ी, लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: 10:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। सबसे पहले ये नॉन फिल्मी गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार जगजीत सिंह,

और आइए प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्मी गाना। ये गाना है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, जानी दुश्मन ये फिल्म है।

मोहम्मद रफी आशा भोसले को अभी आपने सुना। ये फिल्म थी जानी दुश्मन। सफर सुरीला सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब सुनिए नॉन फिल्मी गीत जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में।

जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में अभी आपने ये नॉन फिल्मी गाना सुना। अब जो अगली रचना है वो फिल्मी है, इसे गाया है केके ने। ये फिल्म है रहना है तेरे दिल में।

0: रहना है तेरे दिल में, अभी आपने इस फिल्म से केके का गाया हुआ ये गाना सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सफर सुरीला सा, विविध भारती चंडीगढ़ से। अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं, यानी सफर सुरीला सा। इस प्रोग्राम में कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों रचनाओं का ये कार्यक्रम होता है। और अब बारी है गजल की। फनकार हैं पंकज उदास।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक फिल्मी गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना है, ये फिल्म है छिछोरे।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

अभी आपने नीरज श्रीधर और साथियों की आवाजों में ये नॉन फिल्मी गीत सुना। आप सुनिए आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में चांदनी फिल्म से ये गीत।

0: अभी आपने चांदनी फिल्म से आशा भोसले और विनोद राठौर को सुना।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं का ये कार्यक्रम। और आखिर में सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में ये भक्ति रचना।

अभी आपने शिव महिमा सुनी सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। इसी के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: अभी आपने शिव महिमा सुनी सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। इसी के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम है फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
2: FM Lifeline, Lifeline, Lifeline।
0: नमस्कार श्रोताओं, प्रोग्राम FM Lifeline में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपको मालूम है हम जब भी मिलते हैं अपने किसी न किसी विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो दो विशेषज्ञ PGI के ENT विभाग से मौजूद हैं, और दोनों ने अपना कीमती समय निकाला है और एक अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे बीच में है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे और जो विषय हमने चुना है उससे जुड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। कुछ सवाल हमारे, कुछ हमारे श्रोताओं के। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर बानुमती और साथ में डॉक्टर नूरैन, असिस्टेंट प्रोफेसर्स ENT डिपार्टमेंट ऑफ PGI। आप दोनों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: नमस्कार जी, थैंक यू।
0: आप हमारे बीच में हैं, हमें अच्छा लग रहा है। अपना श्रोताओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बोलने की दिक्कत, चाहे बच्चों में या बड़ों में। ये दिक्कत क्यों होती है, इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं होती हैं, लक्षण क्या हैं, और जिन्हें कहते हैं हम वॉइस डिसऑर्डर्स, किसी भी उम्र में हो सकता है। इस विषय को लेकर आज हम बात करेंगे, साथ में इन समस्याओं से निजात कैसे पाई जा सकती है और इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है अपने लेवल पर और विशेषज्ञ की देखरेख में। तो सबसे पहले डॉक्टर बानुमती, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बोलने की जब दिक्कत होती है इससे हमारा क्या मतलब है?
3: आवाज की जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में। अगर किसी की आवाज फट रहा है या होर्स लग रहा है या ब्रदी है, पूरा हवाई आ रहा है बात करने वक्त, किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सो इसकी कारण बहुत कुछ होती है, बच्चे से लेके बड़े उम्र जैसे 60 साल से ऊपर है उन लोगों में भी आवाज की प्रॉब्लम आती है। सो बोलने की दिक्कत तो हम स्पीच डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये आवाज की प्रॉब्लम तो वॉइस डिसऑर्डर्स में आती है। सो जो तारों हैं अंदर, जो लैरिंजियल सिस्टम में लैरिंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स कारण हम बोल रहे हैं, या ओकल कॉर्ड्स को तारों बोलते हैं, जब वाइब्रेट होता है हम उसको यूज करके हम आवाज निकलते हैं बात करने के लिए। सो अगर उस ओकल फोल्ड्स में, तारों में कुछ दिक्कत आती है, फिर आवाज की प्रॉब्लम बढ़ती है
0: उनके रास्ते में। अगर कोई दिक्कत है
3: उस फोल्ड में, उस तारों में कुछ आती है, तो जैसे कुछ ग्रोथ आ सकती है उसमें, या उसका कुछ न्यूरोलॉजिकली भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत कुछ नर्व्स उसमें सप्लाई करते हैं उसके मूवमेंट्स की। सो अगर उसमें नर्व्स में प्रॉब्लम आती है तो फिर भी वॉइस का प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दो तारों में एक तार का कुछ इशू हो गया न्यूरोलॉजिकली। सो पैल्सी बोलते हैं, ओकल कॉर्ड पैल्सी, सो उसकी वजह से भी बोलने में दिक्कत होती है, आवाज नहीं निकलती है।
0: डॉक्टर नूरैन, आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी मैम ने ये बताया कि दो तार होते हैं और जब तार छिड़ते हैं तो सांस बचता है
4: जी
0: जी, और अगर इन तारों में प्रॉब्लम है तो सांस जो है उसकी आवाज है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें दिक्कत होगी, जैसे डॉक्टर ने बताया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन तारों में ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो जाती है जिसके चलते जो साज है वो गड़बड़ाने लगता है, आवाज गड़बड़ाने लगती है?
4: जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। देखिए, आवाज़ को प्रभावित करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैडम ने अभी बताया कि वोकल कॉर्ड में अगर कुछ ग्रोथ हो जाए, तो कुछ लोग बहुत तेज़ आवाज़ में बातें करते हैं। अगर छोटे बच्चों का हम उदाहरण लें कि खेलते वक्त बहुत चिल्लाते हैं, उस टाइम में उनके वोकल कॉर्ड्स पे कुछ ग्रोथ हो जाती है, जैसे नोड्यूल्स बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो वाइब्रेशन है, साज

0: जैसे बोला आपने, उसका चेंज हो जाएगा, पिच चेंज
1: जी
0: हो
1: जी पिच
0: जाएगी,
1: चेंज हो जाएगी। हाँ
0: तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि लोग जो बोलते हैं वो बोलने का तरीका सही नहीं है, जो उनका ऑप्टिमल, जो बहुत अच्छे ढंग से उनकी आवाज़ जो नेचुरल होती है, उसके अलावा वो कुछ और ढंग से बात करने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ को ज़्यादा करके बोलेंगे या अपना पिच को बहुत कम या ज़्यादा करके बोलना।
1: ये हमें बताइए, क्या अगर कोई हाई पिच पे बोलता है तो वो कुदरती भी हो सकता है?
0: जी, हर पर्सन का अपना एक ऑप्टिमल पिच और
1: हाँ,
0: लाउडनेस होता है जो उसके
1: क्या
0: टेस्ट
1: उसके लिए वो
0: होता है।
1: दिक्कत पैदा कर सकता है?
0: जी, तो अगर वो उस रेंज के हिसाब से वो उसका सही इस्तेमाल ना करके बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे उस रेंज में करे, बहुत कम पिच में जाए या बहुत ज़्यादा पिच में जाए, जो सिंगर्स करने में वो कर
1: क्योंकि
0: सकते हैं, लेकिन
1: रेंज का
0: अगर
1: जो मामला है डॉक्टर,
0: जी
1: वो आमतौर से जो गायक हैं उन्हें मालूम होता है कि मेरी रेंज क्या है,
0: जी
1: क्योंकि उस तरह की आवश्यकता है उस प्रोफेशन की। एक जो आम व्यक्ति है वो अपनी रेंज को कैसे पता लगाए कि मेरी रेंज है क्या?
0: अगर वो नेचुरली बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी आवाज़ को प्रोड्यूस कर पाता है, जिसमें उसको स्ट्रेन नहीं महसूस हो, वो आराम से बात कर पाता है, तो वो उसका ऑप्टिमल पिच या लाउडनेस हम बोल सकते हैं। अगर वो अपने ऑप्टिमल पिच से ऊपर या नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके आवाज़ में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम, दिक्कतें आएंगी, उसको लगेगा गले में ज़्यादा टेंशन महसूस हो रहा है। मेन जो कोऑर्डिनेशन है, जो रेस्पिरेशन, जो हम श्वसन करते हैं और फिर उसके वजह से हम दोनों तार जो हिलते हैं और फिर वो आवाज़ हम चेंज करके उसमें अपने आर्टिकुलेटर्स के तहत, है ना, अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी बिल्कुल
0: तो
1: सर।
0: अगर वो कोऑर्डिनेशन बना के अगर लोगों को बोलता है तो उसका ऑप्टिमल पिच या लाउडनेस है। लेकिन अगर हम वो नहीं करके, हम नॉर्मली से हट के अगर हम कुछ करें तो वो अफेक्ट कर सकता है।
1: अपने बोलने के तरीके से हटके कोई पिच को हम अपनाते हैं और लगातार उसमें बात करते हैं तो वो दो तारों में प्रॉब्लम आ
0: जी
1: सकती
0: जी
1: है।
0: डेफिनेटली आ सकती
1: तो
0: है।
1: ये जो प्रॉब्लम आती है डॉक्टर नूरेन, ये प्रॉब्लम क्या समय के साथ रेस्ट करने के बाद अपने आप चली जाती है कि इसके लिए विशेषज्ञ को दिखाना ही पड़ता है?
0: ये अभी, अब अगर जिसको इस टाइप की आदत लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वो पहले जो नेचुरल ऑप्टिमल पिच पे या ऑप्टिमल लाउडनेस पे खुद ब खुद नहीं जा पाएगा, उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या वॉइस
1: जी जी
0: थेरेपिस्ट
1: जी जी
0: इस काम में उनकी मदद करते हैं।
1: डॉक्टर भानुमति, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब हमारी आवाज बदलती है तो उसमें क्या लक्षण सामने आते हैं और हमें अंदाजा हो जाता है कि अब कुछ पहले जैसा नहीं है, और वो कौन सी घड़ी है जब ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए?
2: हाँ जी, अगर मैं सुबह उठती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे आवाज़ नहीं निकल रहा है, जैसे अभी किसी को कोल्ड हो गया या कंजेशन है, सुबह सुबह जब उठते हैं वो बोलते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं निकल रहा है और पेनफुल हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, सो उस समय उनको एक दिन में अगर वो गार्गल करते हैं घर में, स्टीम करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर भी उनको वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे, फिर उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास आना ज़रूरी है। और जो आप बोल रहे थे कि हाई पिच लो पिच का जो डिफरेंसेस है, जैसे डॉक्टर नरेन ने बोला कि वो गलत आवाज़ निकलेगा तो उनको स्ट्रेन ज़्यादा होगा बात करने में, एक डिसऑर्डर भी हो सकता है बच्चों में, जैसे प्यूबर्टल एज 13 साल में या 15 साल में, अगर एक लड़का है उसका आवाज़ लड़की जैसे होता है, आपने देखा होगा कि उसको प्यूबर फोनिया बोलते हैं, हाई पिच में जो बात करते हैं,
1: जी
2: सो गर्ल्स अगर लो पिच में बात करते हैं फिर उसको एंड्रोफोनिया बोलते हैं, ये डिसऑर्डर्स में आती है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से प्यूबर्टल एज में,
1: ओके ओके
2: थर्टीन टू
1: ओके
2: फिफ्टीन
1: ओके
2: ईयर्स में, उसकी वजह से जो शुरू हो रही है वो
1: मतलब इस एज में हमें डॉक्टर को एक बार मिलना चाहिए।
2: मिलना चाहिए, क्योंकि बॉयज को 13-14 ईयर्स में हाई पिच से लो पिच होना चाहिए, फिर उनका जो वॉइस ब्रेक्स आती है ना उसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे उसको एक्सेप्ट करके फिर नॉर्मल लो पिच में शुरू कर देते हैं वो मोटे आवाज में। अगर कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये मोटे आवाज़ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, वो ठीक रहता है कि उसी को हाई पिच को फॉलो करते हैं, फिर बच्चों को साइकोलॉजिकली अफेक्ट होती है, फिर हमारे पास आते हैं उसके बाद, बट 2-3 सेशन में उनको ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी टेक्निक्स है जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं इसकी, जो लैरिंग्स की हाइट का अगर ऊपर करके करते हैं तो हाई
1: जी
2: पिच
1: सर
2: आती है, अगर लो करके करते हैं तो लो पिच आती है, सो
1: जी
2: उनको डिजिटल मैनिपुलेशन कहते हैं हम, उसको यूज़ करके वो मॉडिफाई करके बच्चे को घर में प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, दिस इज अ डिसऑर्डर।
1: जी
2: सो बहुत कुछ कारण होते हैं वॉइस चेंजेस के लिए, ज्यादा पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से भी आजकल आप देखो चंडीगढ़ में कितना ट्रैफिक है, सो उसकी वजह से इरिटेंट्स जो अंदर जाती है, जो हम ब्रीथ करने, सांस लेने वक्त जो जाती है अंदर, बहुत इरिटेट करती है तारों को, उसकी वजह से भी वॉइस चेंज हो जाती है।
1: पॉल्यूशन भी एक मेन
2: पोल्यूशन
1: कारण
2: इज द
1: है।
2: मेन रीजन, अगर नॉइस पोल्यूशन लेंगे तो बहुत

0: नॉइज की वजह से लोग क्या करते हैं, ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं. सो जब ऊंचा बोलते हैं अपने ऑप्टिमम लाउडनेस से ज्यादा ऊंचा बोलने वक्त, वो अगेन हमें अब्यूज करना होता है वोकल फोल्ड्स को, क्योंकि आपका जो ऑप्टिमम लाउडनेस है उसके लिए एक हर एक बंदा के लिए एक पिच, और जैसे उन्होंने बताया कि एक पिच होती है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, उससे अगर हम ऊपर जाते हैं
1: लगातार बोलेंगे तो मुश्किल होगी. डॉक्टर नूरेन, अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या ज्यादा बोलते रहना या बोलना ही नहीं, दोनों सूरत में उसका हमारे वोकल कॉर्ड्स पर प्रभाव पड़ता है? अगर वो पड़ता है तो किस तरह से पड़ता है?
2: जी, अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर हम नहीं बोले तो ये तो संभव ही नहीं.
1: कहते ना कि बोलते ही नहीं है तो कुछ बोलते ही नहीं, कोई बात ही नहीं
2: जी,
1: करता.
2: हाँ, वो कम मितभाषी होते हैं कुछ. हाँ. लोग जो कम बातें करते हैं, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है. कम्युनिकेशन, तभी हम दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं. हम जैसे अगर हम बोले कि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, उसके भी तीन कैटेगरी होते हैं. एक जो होता है एब्यूसिव बिहेवियर, यानी हम बहुत चिल्लाने लग गए, या फिर हम सिगरेट वगैरह स्मोकिंग को ज्यादा करते हैं तो इससे हमारी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है. दूसरा है ओवर यूज, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा देर तक बातें कर लेते हैं. फोन पे हम लगे हुए हैं बहुत देर तक, घंटों बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें अफेक्ट करेगा.
1: उसे आवाज का थकना कहते हैं कि आवाज का खराब होना कहते हैं?
2: आवाज थक के फिर वो टायर्डनेस होती है, और वही लंबे समय में बढ़ के वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है.
1: जी, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वही डिसऑर्डर बन जाता है.
2: जी, तो ये एक आपका बिहेवियरल इशू है.
1: बोलने में ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल अगर नहीं रखा जाए तो ये विकार में बदल जाती हैं. ये कहना है आपका.
2: और कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम बोले कि जिसे को एसिडिटी या फिर रिफ्लेक्सेस वगैरह ज़्यादा बनते हैं, जो बोलते हैं हम खट्टे डकार ज़्यादा आना, तो वो भी हमारे सिस्टम को इफेक्ट करता है, बोलने के सिस्टम को, और उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो मेडिकल कंडीशन, बिहेवियरल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे पैरालिसिस हो जाना, ये सब चीजें से हमारा जो है आवाज अफेक्टेड हो सकता है.
1: तो गले का लकवा भी होता है?
2: जी, गले का पैरालिसिस हम जो बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे नर्व्स जो है वो मेनली वेगस नर्व, 10th नर्व जो है वो हमें हमारे वोकल कॉर्ड को पहुंचती है. अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए सर्जरी से या फिर किसी अन्य कारण से, तो उसमें क्या होगा, वोकल कॉर्ड फिर सही ढंग से मूव नहीं कर पाएंगे, तो आवाज़ कम निकलेगी, या आवाज़ निकलेगी लेकिन हवा के साथ निकलेगी. तो इस कंडीशन में
1: हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा वैसे कि नहीं?
2: जी, ये ट्रीटेबल है. अच्छा. इसमें भी थेरेपी वगैरह दे के किस कैसे उन वोकल कॉर्ड को सही ढंग से टकराए आपस में, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है जिसमें किया जाता है. स्पीच थेरेपी से अगर ठीक नहीं हो तब सर्जरी का भी उसमें ऑप्शन होता
1: है. वो लास्ट ऑप्शन होती है.
2: जी जी,
1: कि अगर कुछ नहीं बना तो सर्जरी होगी. तो डॉक्टर बानुमती, अब आप हमें ये बताइए कि जो कहते हैं कि ड्राई एयर में सांस जब ली जाती है तो उसका हमारी आवाज़ पे प्रभाव पड़ता है, या साइनस हमें रहे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है.
0: हाँ,
1: तो ये स्थिति क्यों बनती है और ऐसे में हमें क्या करना है?
0: हाइड्रेशन, ड्राई एयर में बेसिकली जब भी समर शुरू होता है बहुत ड्राई हो जाती है वेदर. सो उस समय तो बहुत लोगों का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो तारों के ऊपर है वो ड्राई हो जाती है.
1: जी,
0: क्योंकि वो हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है आपके आवाज़ ठीक होने के लिए. जैसे मैं बोलते रहूँगी ऐसे करूँगी तो मैं इसलिए थ्रोट क्लियर कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा कुछ फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है, या मुझे क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ.
1: बार बार
0: ऐसे करते रहते हैं क्योंकि वो पोल्यूशन की वजह से होता है या ड्राई एयर की वजह से होता है. आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ड्राई हो जाती है तारों के ऊपर. सो उसकी वजह से हम ओकल हाइजीन प्रोग्राम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि हर 15 मिनट आपको गुनगुना सा पानी सिप करते रहना, स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो म्यूजिशियंस और टीचर्स हैं, और हमें भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में भी 70% पानी का नीड बहुत होती है. सो यू हैव टू टेक, ज़्यादा पानी लेना बहुत ज़रूरी है, गुनगुना सा पानी. अभी समर शुरू हो गया, सारे रेफ्रिजरेटेड वाटर लेना शुरू कर देते हैं, सो फ्रिज की पानी लेना गलत है. सो आपको गुनगुना सा पानी
1: के मौसम में भी गुनगुना पानी,
0: नॉर्मल पानी भी उतना ही होता है टेम्परेचर, सो आप ले सकते हो समर में. एंड फ्रिज से जो पुराने खाना रीहीट करके खाना, और खट्टी दही खाना, ये सब मना करते हैं. सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टी चीज़ है, वो सारा मना करते हैं, जिसको वॉइस प्रॉब्लम्स होती हैं. सो उसकी वजह से, एंड इवन कॉफ़ी एंड टी स्टिमुलेंट्स होते हैं, वो इरिटेंट्स होते हैं. सो उसकी वजह से वो तारों अफेक्ट होती हैं एसिडिटी की वजह से. एंड समटाइम्स अ फूड स्टाइल, जैसे डॉक्टर नूरेन बताए थे, फूड्स जो हम ले रहे हैं, ओजीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, जैसे जंक फूड बहुत खाने की पसंद करते हैं बच्चे, पिज्जा, बर्गर्स, द स्ट्रीट

0: फूड्स, सो उसमें बहुत मसालाज और चीज है, मैदा है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है.
1: मतलब जंक फूड ने शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है.
0: डेफिनेटली. सो वो एसिडिटी की वजह से वो तारों को आके इरिटेट करती है जब हम लेटते हैं सोने वक्त. सो इसलिए बड़े लोगों को हम बोलते हैं कि उसका पोस्चर भी चेंज करना होता है. लेटने वक्त सीधा ऐसे 180 डिग्रीज में नहीं लेटाना है उनको. और एसिड रिफ्लेक्स की वजह से तारों की इन्फ्लेमेशन हो सकती है.
1: जी डॉक्टर नूरेन, अब आप हमें बताइए कि कहते हैं कि उस बंदे की आवाज चली गई, बैठे बैठे आवाज चली गई, अच्छा भला कल बात कर रहा था, आज उसकी आवाज नहीं निकल रही, वो खुद सदमे में आ जाता है, तो आवाज का चले जाना कहाँ जाती हो?
2: जी आवाज तो चले जाने का मेन रीजन आपका ऑर्गेनिक हो सकता है या फंक्शनल हो सकता
1: okay,
2: है.
1: ओके ओके.
2: इसमें अगर फंक्शनल बोले तो साइकोजेनिक, अभी उसको कुछ ज़्यादा टेंशन हो गया है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली कुछ तो इंसिडेंस हुआ, इसके वजह से भी कई लोग अपनी आवाज़ खो देते हैं. तो अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जनरली कफ या फिर इस टाइप की जो नॉर्मल आवाज़ है वो तो प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन जब उनको बोलने के लिए कहा जाए या वो कुछ बोलना चाहते हैं
1: तो बोल नहीं पाते,
2: नहीं बोल पाते. तो इस कंडीशन में हम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को टारगेट करना होता है और उसकी काउंसलिंग जो होता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, और फिर वो जो आवाज़ प्रोड्यूस कर पाते हैं उससे लेके हम उनकी अलग टाइप की आवाज़ें प्रोड्यूस करवाते हैं. लेकिन अगर हम बोले कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है, जैसे पैरालिसिस हो गया, उसमें क्या होगा कि ब्रीदिनेस हो जाती है आवाज़, तो जैसे हम लोग फुसफुसाते हैं सेम इस टाइप की आवाज़ आती है लेकिन वो एक्चुअल आवाज़ नहीं है. तो इस कंडीशन में तो हम देखते हैं कि पहले अगर थेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए, या फिर उसकी सर्जरी भी पॉसिबल है ना, कभी इंजेक्शन वगैरह भी, बोटॉक्स इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं जिससे क्या होता है कि वो सही ढंग से आपस में टकराएं और आवाज़ प्रोड्यूस हो.
1: तो आवाज़ अमूमन वापस आ जाती?
2: जी आ जाती है.
1: बहुत अच्छी बात है कि वापिस आ जाती. तो सबसे, क्योंकि बिना आवाज के तो फिर बात ही बनती नहीं ना, सारा काम हमारा निर्भर आवाज पर है, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो रोजी रोटी भी.
0: Exactly.
1: उन्हें किस तरह से अपनी आवाज का ख्याल रखना चाहिए?
0: उनको भी वोकल हाइजीन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सिंगर्स हैं दो तरीके से होते हैं, जो प्रोफेशनली टीच करते हैं, जो लाइक नॉट
1: टीचर्स को बार बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है.
0: हाँ, जो
1: 40-45 बच्चे उन्हें मैनेज करना.
0: एग्जैक्टली. स्कूल में जो सिखा रहे हैं उनको और भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि 40 बच्चे तो मिनिमम होते हैं हमारे इंडियन स्कूल सिस्टम में. सो वहाँ पे एम्पलीफिकेशन सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं टीचर्स, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग बच्चे भी ज़्यादा है और वो बहुत लाइक 8 आवर्स इनका कंटिन्यूस टीचिंग आवर्स होती है, तो उनको ब्रेक ही नहीं मिलता है.
1: और साउंड सिस्टम आपने बताया यूज़ नहीं करते हैं.
0: यूज़ नहीं करते हैं.
1: तो आपका कहने का मतलब ये भी है कि साउंड सिस्टम हमें
0: मैनेजमेंट प्रोवाइड करना
1: यूज़ करना चाहिए.
0: ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. आजकल आपको वायर्ड सिस्टम आ रही है, लाइक टीचर यहाँ पे कुछ माइक रख के सारे बच्चों को वहाँ पे स्पीकर से कनेक्ट करके क्लासरूम में कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट को थोड़ा खर्च करना पड़ेगा. उसकी वजह से टीचर्स का जो आवाज़ के नुकसान होगा वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत टीचर्स आते हैं हमारे पास. एंड जब भी हम कैंप्स कंडक्ट करते हैं स्कूल्स में, हम सुनते हैं कि जो भी टीचर्स है, ये प्राइमरी ग्रेड में ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी मिडिल स्कूल तक ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. मिडिल स्कूल में बच्चे बड़े हैं, फिर भी वो शोर इतना मचाते हैं कि टीचर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. एक टीचर्स का ये इशू है. सिंगर्स में जो नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, जैसे प्रोफेशनली वो परफॉर्म नहीं करते हैं, बट जैसे बाथरूम सिंगर्स हो गया, या वो ट्राई करते हैं कि जो स्म्यूल वगैरह सॉफ्टवेयर्स में ट्राई करते रहते हैं बहुत लोग,
1: लगातार करते रहते हैं.
0: हाँ, सो उनको ऐसे होता है कि मैं हाई पिच में ट्राई करूँ, वो ट्रेंड नहीं है बट फिर भी वो कोशिश करेंगे, उसकी वजह से तारों में ट्रॉमा हो सकती है.
1: मतलब अचानक आप अपने वोकल कॉर्ड्स को एकदम से ऐसा काम दे रहे हैं जो उसने पूरी उम्र नहीं किया है, अचानक से दे रहे हैं, तो उस पर कोई भी इफेक्ट आ सकता है, खराब हो सकता है.
0: सिंगर्स में बहुत देर तक वो गाते रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो प्राइवेट क्लासेस भी लेंगे, स्कूल में भी सिखाएंगे और परफॉर्मेंस भी देंगे अपनी परफॉर्मेंसेस, और बच्चों को भी परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करते हैं.
1: जी, तो आपने ये बहुत अच्छी एक बात बताई मैनेजमेंट के लिए कि स्कूलों में साउंड सिस्टम बहुत जरूरी है, जहां टीचर को बार बार चिल्लाना नहीं है, केवल अपनी बात माइक्रोफोन के जरिए और लाउड स्पीकर के जरिए या स्पीकर के जरिए अपनी क्लास तक पहुंचानी है. डॉक्टर नूरेन, आपसे जानना चाहेंगे कि आवाज का कर्कश होना क्या है?
2: जी, आवाज़ का कर्कश होना जब आवाज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो और साथ में थोड़ी थोड़ी हवा की मात्रा आए, तब उसको हम आवाज़ का कर्कश होना बोलते हैं, या होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं. तो ये तो जैसे हमने बोला कि ज़्यादा आवाज़

0: का इस्तेमाल करने से हो सकता है। अगर हम देखें बच्चों में जब वो ज़्यादा चिल्लाएं या फिर टीचर्स हो गए जो एडल्ट हैं उनमें अगर देखें तो उसमें भी एक कर्कश होना हो सकता है, तो इसके लिए हम उसका डिटेल असेसमेंट करते हैं और चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है जो नॉर्मल आवाज़ में वेरिएशन नहीं होता है, तो मे बी ड्यू टू वोकल नोड्यूल या पॉलिप के वजह से आवाज कर्कश हो जाता है।
1: एंडोस्कोपी करते हैं डिपार्टमेंट में अगर लोग आते हैं तो वहाँ पे एंडोस्कोपी लैब है जिसमें फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप की असेसमेंट होती है, उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं कि तारों में क्या दिक्कत है, फिर निगलने की भी दिक्कत होती है आवाज के साथ साथ, वो भी चेक कर सकते हैं। सो दो चीजें
2: सामने हो जाती। डॉक्टर भानुमति, हम आपसे अब ये जानते हैं कि स्वर तंत्र में सूजन क्यों होती है?
1: मैंने बोला ना अब्यूजिव बिहेवियर्स जो है, ऊंचा बोलना,
2: जैसे आपने बताया, और लगातार ऊंचा बोलना,
1: हाँ लगातार ऊंचा बोलना, फोन्स की वजह से बहुत देर बच्चे बात करते रहते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप का ये आदत हो गया कि बहुत देर फोन यूज करना, और हेडफोन्स के साथ जब यूज करते हैं ऊंचा बोलना उनका आदत हो जाती है, बिकॉज उनको जो नॉइज है सराउंडिंग नॉइज वो सुनता नहीं है, सिर्फ उनकी आवाज आएगी ना, सो ऊंचा बोलना आदत हो जाएगी उनको,
2: सुनते वो ऊंचा बोलेंगे।
1: हाँ, और धूम्रपान, टबाको यूज और अल्कोहल कंसम्पशन ज्यादा हो तो उसमें भी होती है, एंड सर्टेन ऑक्यूपेशंस लाइक सर्टेन
2: सिंगर्स के लिए बताया,
1: हाँ सिंगर्स छोड़ के जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जैसे डस्ट होता
2: अच्छा,
1: है ना
2: अच्छा।
1: जो डस्ट है उसकी वजह से भी आवाज की बहुत कुछ नुकसान हो सकती है, क्योंकि ये जो केमिकल मिक्स्ड डस्ट होती है उसका बहुत कुछ, ये कार्सिनोमा की ग्रोथ, लैरिंजियल कैंसर उसमें भी हो सकता है जो डस्ट है, किस तरीके से वो हम लाइक क्या केमिकल होती है उसमें वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे ये वाला जो लकड़ की डस्ट नहीं होती है, केमिकल के साथ साथ भी कुछ डस्ट आती है, प्लास्टिक जो ग्राइंड करते हैं, सो ऐसे ऑक्यूपेशंस में और भी थोड़ा ख्याल रखना है कि मास्क पहन के काम करना सो दैट उसको सांस लेने वक्त वो अंदर ना जाए,
2: और यहाँ के लिए मैनेजमेंट
1: मेजर्स हम लेना पड़ेगा,
2: यहाँ के लिए मैनेजमेंट ये है कि हम मास्क लगा के
1: करना बहुत, पोल्यूशन से भी हम बचा रख सकते हैं और ये ऑक्यूपेशन जब करते हैं उसमें भी हम बचाना बहुत जरूरी है।
2: तो अब हम आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर कि अपने गले की मैनेजमेंट हम कैसे करें। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की देखरेख में तो होगा ही, लेकिन एज ए लेमैन के तौर पे आप हमें बताइए हम अपने स्वर तंत्र को किस तरह से मजबूत बना के रख सकते हैं, स्वस्थ बना के रख सकते हैं। डॉक्टर भानुमति आप बताइए।
1: पानी पीना, मैंने बोला हाइड्रेशन थेरेपी हम बोलते हैं उसको, कि हर 15 मिनट आप सिप करते रहना, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वोकल फोल्स के लिए। सेकेंड थिंग, जो स्पाइसी मसालाज और जो तेल की जो खाने हैं ज़्यादा तेल डाल के या बटर ड्रिप्ड पराठाज होती है वो सब खाने में बहुत स्वाद होती है, बट नुकसान तो आवाज़ को डेफिनेटली आती है क्योंकि उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है।
2: अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी बंद करवा देते हैं।
1: हाँ जी, यही बोलते हैं हमारे पेशेंट्स भी कि आपके पास आने में हमारा डाइट इतना कंट्रोल हो जाती है कि कुछ खा नहीं सकते, पानी ही पीना है। सो उतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि जितना आप खा रहे हो उतना वर्कआउट्स भी कर लो, अगर आपका मसल स्टोनिंग होना है तो इवन वोकल मसल स्टोनिंग के लिए बहुत कुछ एक्सरसाइज हम बोलते हैं।
2: तो आपने एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज बता दीजिए कौन सी है गले के लिए।
1: नहीं, उसका अलग तरीके से हम करते हैं,
2: जो कुछ आप यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से बता सकते हैं आपके लिए इजी हो बताना एक आम व्यक्ति के लिए।
0: देखिए जैसे जो सिंगर्स होते हैं उनमें हम ये, या फिर जो टीचर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, जब बोलना शुरू करें तो उस टाइम में वार्म अप और कूल डाउन करें, वार्म अप में उसमें जैसे हमिंग से शुरू करते हैं,
1: लंबे सांस लेके फिर छोड़ने वक्त, सांस को छोड़ने वक्त बोलते हैं, जितना तक आपके लाइक पेट अंदर जाए कि पूरा हवा बाहर निकाल के आप कहना, दैट इज भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं
2: प्राणायाम।
0: अगर आप हमिंग करते हो उस टाइम में जो वोकल कॉर्ड्स हैं बहुत आराम से मिलते हैं, तो वो एक तरीके से स्टार्टिंग ले सकते हैं अगर हम लंबे देर तक बोलना है, और जब आप बहुत देर तक आपने बोला और एकाएक आप चुप हो जाए तो वो भी एक सही तरीका नहीं है। उस टाइम में आप थोड़ा सा साय करें, साय मतलब के थोड़ा सा लंबे सांस छोड़ें, लाइक दैट, सो इट इज लाइक
2: आप रिलैक्स भी हो जाएंगे,
0: रिलैक्स कर रहे हैं,
2: नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगे,
1: कंट्रोल्ड ब्रीदिंग भी बहुत
2: इसका मतलब है। इसमें योग का भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है कि सुबह उठकर अगर ब्राह्मी प्राणायाम,

0: हमने रिसर्च भी किया है, भ्रामरी प्राणायाम में रिसर्च भी किया है कि जिसमें नोड्यूल था वो 2 हफ्ते में उनको भ्रामरी प्राणायाम करके बिल्कुल डिसअपियर ही हो गया भ्रामरी प्राणायाम करके। सो हमने और कुछ टेक्निक्स, जो ग्रोथ था, नोड्यूल था, वो ओकल अब्यूज की बाद में जो आती है नोड्यूल, वो तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। सो क्योंकि हम उनको बोलते हैं कि मॉडिफाइड वॉइस रेस्ट और पूरा बिल्कुल आवाज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जब नेसेसरी है, बच्चे होते हैं घर में, बात करना ही है मदर को, फिर वो यूज़ करते हैं आवाज़, बट भ्रामरी प्राणायाम में बिल्कुल आप ठीक कर सकते हो।
1: डॉक्टर नुरेन, आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि गले के कैंसर की बात होती है, डॉक्टर बानुमति ने बताया भी है, तो ये जो कैंसर है, गले का कैंसर, ये क्यों हो जाता है और ये सामने किस तरह से पता चलता है कि वाकई अब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि आपको कैंसर हो?
2: जी, सबसे पहले तो हम उसमें केस हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। जो काफ़ी समय से सिगरेट और धूमपान और तंबाकू का सेवन करते हैं तो, या उनकी फैमिली में ऐसा कुछ हिस्ट्री है कैंसर का, तो उस कंडीशन में और जब आवाज़ एकाएक चेंज हो जाए, तो गले में दर्द के शिकायत हो, तो ये सब सिचुएशन, या निगलने में तकलीफ हो, तो ये सब अगर हम करें तो उसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि
1: तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
2: डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और हम उसका असेसमेंट करेंगे कि
1: उसमें उपचार क्या है।
2: उपचार तो आप कैंसर है तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है कि सबसे पहले उसमें जो एरिया जो ग्रोथ हो रहा है उसको कैसे रोकें, तो मेडिकल ट्रीटमेंट पहले होगा, अगर उससे नहीं होता है तो फिर सर्जरी और रेडियोथेरेपी इसकी ज़रूरत पड़ती है।
1: तो इनसे ये करवाने के बाद आवाज़ कायम रहती
2: है? आवाज़ उसमें अफेक्टेड बहुत सारे केसेस में हो जाती है, लेकिन फिर वो थेरेपी से वो पहले जैसे भी हो सकती है। अगर मान लो कि अगर उसमें कमजोरी हो गई और लकवा, जैसे आपने बोला, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया, तो वो हम थेरेपी से वो ठीक कर सकते हैं। और जो आवाज़ कर्कश हो गया वो भी धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन अगर उसकी सर्जरी हुई है और उसका कुछ पार्ट कट हुआ है तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसको हम सही ढंग से बोलना सिखा सकते हैं।
0: ये जो लैरिंजियल कैंसर में हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, सो ICMR ने फंड्स दिया है हमें, सो उसके उसको यूज करके हम जो स्मोकर्स है लाइक
1: उनको जागरूक कर रहे हैं,
0: उनको उनका जो प्रॉब्लम्स है, वॉइस चेंजेस जो आ रही है, या सिर्फ नोड्यूल्स है या पॉलिप्स है, किसी को भी वॉइस में कुछ भी परेशानी हो रही है, वो आके हमें हमारे पास फ्री वॉइस स्क्रीनिंग कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, स्पीच पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ENT, वहाँ पे PGA में है, 4th फ्लोर में, न्यू OPD में, वहाँ आके फ्री वॉइस स्क्रीनिंग होगा। 16 अप्रैल को हम कर रहे हैं,
1: 16 अप्रैल को फ्री वॉइस स्क्रीनिंग होगा।
0: हाँ जी, उससे पहले भी हम
1: कि केवल मरीज
0: कोई भी आ सकते हैं, और अगर स्मोकर्स हैं उनको डेफिनेटली आना पड़ेगा, क्योंकि हम अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
1: और डॉक्टर बानुमति आना कहाँ है?
0: 4080 या 4078 है नंबर, वॉइस लैब है न्यू OPD में, 4th फ्लोर में, A ब्लॉक, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, स्पीच एंड हियरिंग यूनिट में है।
1: 16 अप्रैल
0: को, उससे पहले भी आ सकते हैं, हमारे बहुत जगह पे स्कैनर्स भी डाल के रखे हैं PGA में, उस स्कैनर में क्वेश्चंस आएगा, उसको फिल करके वो वहां पे आ सकते हैं।
1: तो डॉक्टर बानुमति और डॉक्टर नुरेन, आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आए प्रोग्राम FM लाइफलाइन में, आज आपने वॉइस डिसऑर्डर्स पर जानकारी दी। जाते जाते एक एक लाइन में आप कोई मैसेज हो?
0: Empower your voice is a theme of this year. So आपको आपके आवाज को बहुत ख्याल से सेफ और प्रोटेक्टिव वे में यूज करना बहुत जरूरी है।
1: जी, और डॉक्टर नुरेन आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, आवाज ही आपकी पहचान है।
1: क्या आवाज?
2: तो इसलिए अपनी आवाज को की ख्याल रखें और इसका सही इस्तेमाल करें।
1: जी, तो आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आए, एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, आज के FM लाइफलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ रहे डॉक्टर बानुमति और डॉक्टर नुरेन, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, PGI, चंडीगढ़। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अपने गले का ख्याल रखें। नमस्कार,
0: धन्यवाद।
1: तकनीकी सहयोग अरुण बाबा का।
3: FM लाइफलाइन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम FM लाइफलाइन, FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसीं सुन रहे हो लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रां दे। तुसीं भी अपना कोई सुनेहा इस प्रोग्राम च साडे नाल सांझा कर सकदे हो। टेलीफोन नंबर्स ने 2660615, 2660617 ते 2660619। सुनेहे मित्रां दे प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो?
2: बेंजू बोल रहे हैं।
1: बेंजू?
2: हां जी बेंजू।
1: वाह जी वाह, नाम बड़ा तुहाडा बिल्कुल वखरा नाम है तुहाडा।
2: ਹਾਂਜੀ,
1: ਇਹ ਬੈਂਜੋ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ?
2: ਇਹ ਜਦੋਂ

0: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का

0: शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में SS प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आज का ये पूरा कार्यक्रम

0: अनुरोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होट

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और शाम 4 बजे आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से बातचीत सुन लीजिएगा। फिलहाल आप आनंद बख्शी के लिखे गाने सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है यादों की महफिल। फिल्म आपकी कसम, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज का ये पूरा कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी के नाम है। सुनिए मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिता रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

0: दुश्मन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज

0: कुछ एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं।
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
0: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन।

0: योजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली प्रसारित किया जाएगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेल्युलॉइड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में गीतकार आनंद बख्शी के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम अमृतवाणी होगा शाम 6:30 पर। जयमाला ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। कुछ फिल्मी पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे सुधा जौहरी की लिखी नाटिका सुनिए चूहा प्रकरण, निर्देशक हैं सुशील बैनर्जी। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी पर केंद्रित रहेगा और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की आज संसद भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई बैठक मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं। श्री रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: ذمہ دار لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔
1: آگے پیپر لیک نہیں ہونے کے لیے سختی سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی پردھان منتری جی نے جانکاری دیا، اور پردھان منتری جی نے یہ بھی کہا کہ پیپر لیک صرف ایک راج کا معاملہ نہیں ہے، صرف کیندر سرکار کا معاملہ نہیں، دلگت راجنیتی کا وشے نہیں ہے، یہ دیش کا وشے ہے، اور یوواؤں کا بھوشیہ کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونے کے لیے اور کھلواڑ نہیں کرنے دینے کے لیے سختی سے قدم بھی اٹھائے، سزا بھی دے دوشیوں کو، اور پھر فل پروف سسٹم کام جو ابھی کر رہے ہیں اس میں بھی سب مل کر کے کرے۔
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि हर मुक्त व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी समझौते किसानों के कल्याण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं। संसद के मानसून सत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए विधेयकों को पारित कराने में रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाएगा। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों से संसद में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि भले ही राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन सभी सांसद देश की सेवा करने, उसके भविष्य की रक्षा करने और युवाओं के कल्याण के लिए काम करने के लिए चुने गए हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से व्यापक राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसके चलते अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अंबाला पुलिस द्वारा लोगों को आवाजाही में परेशानी से बचाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। शंभू बॉर्डर के बंद होने के कारण दिल्ली और पंजाब के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली से पंजाब आने वाले वाहन लालड़ू या डेराबसी से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके पंजाब आ सकते हैं। इसी तरह पंजाब से दिल्ली जाने वाले वाहन राजपुरा लालड़ू डेराबसी से भी वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके अम्बाला छावनी और फिर दिल्ली जा सकते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए यात्री डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। मौसम विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय ने कहा है कि आज और कल पूरे क्षेत्र में व्यापक बारिश होगी। इस दौरान हालांकि कुछ जगह बारिश हल्की से मध्यम रहेगी, वहीं पंजाब और हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी 12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। मानसून के इस दौर को देखते हुए उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 23 तारीख को भी कई जगहों पर और उसके बाद कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्य में कौशल विकास को नई गति देने के लिए पीएम सेतु योजना के तहत 12 हब एंड स्पोक क्लस्टरों में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। इस पर 2,892 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में पीएम सेतु योजना की राज्य स्तरीय संचालन समिति की पहली बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित 12 क्लस्टरों में से कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र, कलायत, पलवल, छारा, सोनीपत, मंडलौला, बरेली कला 7 क्लस्टरों की पहचान की जा चुकी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हम तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए ने आज संसद भवन के जीएमसी बारयोगी ऑडिटोरियम विखे अपनी संसदीय पार्टी की मीटिंग की। इस हुण मंगल मिनल वजो जाने जाता है। मीटिंग दौरान एनडीए के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने से बधाई देंदिया एक मता पास किया। पत्रकारों नाल गलबात करदिया संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान श्री मोदी ने प्रीख्या पेपर लीक विच शामिल लोगों खिलाफ सख्त कार्रवाई करन अते देश दे नौजवानों के हितों की रक्षा करन दे सरकार दे संकल्प नूं दोहराया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है।

0: सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: पंजाब के जल स्रोत मंत्री बिरेंद्र कुमार गोयल ने कल नूरपुर बेदी ब्लॉक के पिंडा विच सिंचाई लई पानी मुहैया करवाउण दी योजना की शुरुआत पिंड छज्जा तो की थी। इस योजना उत्ते 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पिंड के वसनीकों संबोधन करदे उन्होंने कहा कि नूरपुर बेदी इलाके के पिंड हुण तक खेतीबाड़ी लई सिंचाई वास्ते पानी दी सहूलतों तो वांझे रहे ने। इस समस्या के हल वास्ते चार संभावित विकल्पां दा अध्ययन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस तहत 8 तो 14 पिंडां दे समूह बना के छोटियां छोटियां लिफ्ट सिंचाई योजनावां विकसित कीतियां जा रहियां ने तां जो किसानां दी लोड़ मुताबक पानी दी सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। इस दे नाल ही चोहां ते नदियां ते बन्न बना के मीं दे पानी नूं भंडार करन ते खेतां तक इस नूं पहुंचाउण दी योजना वी तैयार कीती गई है। मंत्री ने दस्सिया कि 102 पिंडां नूं सिंचाई सहूलतां मुहैया करवाउण लई सतलुज दरिया आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनावां ते सवा नदी उत्ते बनाए जाण वाले बन्न नूं इकट्ठे लागू करना सब तों ठीक रहेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जलंधर जोनल इकाई ने पठानकोट के पिंड पट्टियां विच हुए करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन घोटाले और गैर कानूनी रेत माइनिंग मामले में कार्रवाई करदिया बीते दिन 16 वख-वख थावां ते छापेमारी करके 1,75,00,000 की नकदी और 91,34,000 रुपए के बैंक बैलेंस जब्त किए ने। जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड उस समय का वधीक डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह सी। जिक्र योग है कि कुलदीप सिंह ने उसकी सेवा मुक्ति तो सिर्फ 4 दिन पहला एक राजमंत्री की सिफारिश से पेंडू विकास बारे ईडीसी नियुक्त किया गया। इस दौरान उसने पिंड विच सरकारी जमीन निजी व्यक्तियों को तब्दील करने का एक विवादपूर्ण हुक्म पास किया। सूत्रों मुताबिक सरकारी इजाजत तो बिना गैर कानूनी माइनिंग की जा रही थी जिस नाल सरकारी खजाने को काफी नुकसान हो रहा है। संबंधित फर्मा की भी जांच चल रही है। जिक्र योग है कि पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणियां जारी की ने जिस विच कहा गया कि सरहदी खेतरां च गैर कानूनी माइनिंग ISI वालों संचालित नशा तस्करां दहशतगर्दां ते देश विरोधी तत्तां दा समर्थन करती है। अदालत ने सरकार नूं इस नूं रोकने दे निर्देश दिते हुए ने। अमृतसर देहाती पुलिस ने नशा तस्करां गैंगस्टरां अते सरहद पारों चल रहे गैर कानूनी नैटवर्कां खिलाफ ऑपरेशन प्रहार तहत जिले च इक्को समय छापेमारी करके हुण तक करीब 40 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है। अमृतसर बॉर्डर रेंज के DIG हरमन बीर सिंह गिल ने दस्सिया कि पुलिस टीमां सवेर तों ही जिले के कई इलाकों च इक्को समय सर्च ऑपरेशन चला रही ने। कार्रवाई दौरान एक वड्डे नशा तस्कर सुखदेव सिंह नूं भी गिरफ्तार किया गया। वीरवे सांझे करदिया DIG ने कहा
2: ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਰੋਪਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਡਰੋਪਿੰਗ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ADS ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ।
1: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ 562 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40। ਨਮਸਕਾਰ।
3: FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਪਰ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं इज्जत फिल्म के गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत को लिखा है साहिर ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: पटना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत। आवाज किशोर कुमार की है, शब्द रचना मजरूह की, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: सौदागर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।

0: आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे के हाथ में गुड़िया पकड़ा देती है, जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी, जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या? अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती है और अब मोबाइल है। अब माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें अपने आप से बच्चा स्क्रीन बदलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही है आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे। बड़ी मान मनोवल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया। और आज बेटे, नाती, पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आंखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था? याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी। गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।

0: महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं भाई, आप अपने अनुभव ही तो बताइए कि आपने अनुभव किया ऐसा कुछ कि आपने कभी ये गुनगुनाया हो गाना किसी और के लिए या किसी ने आपके लिए ये गाना गुनगुनाया हो। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि धन्यवाद आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था। किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी, और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था। और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार कोई हो नहीं सकता, उनके गीतों में जो सहजता है। तमाम श्रोताओं की बात इन वाक्यों में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आनंद बख्शी साहब का एकदम सदाबहार दिल को सुकून देने वाला ये गाना था।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और इस बात को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाक्या बताया कि उसकी एक सहेली के दांत पूरी तरह खराब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्जापुर कईल हो गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कईल बलमो सोने की थाली में जेवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें पापा का प्यार, धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते कदम, हम सफर का साथ खट्टे मीठे अनुभव सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है, ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है जिसमें पिता का निश्चल स्नेह हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है, यहाँ गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूरत की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है, और कौन ऐसा शख्स है जो ये गाना जो हमने सुनवाया था पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना ले ना लाना पापा जल्दी आ जाना, सचमुच एक मर्म है इस गाने में। और अभी तो हमने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवाया, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो वो भी बताते चलिए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है।

कि कौन है इसमें हीरो, कौन है हीरोइन। त्वरित जवाब दीजिए क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

0: शशि कपूर और नंदा इस फिल्म में हीरो हीरोइन थे, ये हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, त्वरित जवाब आया और लंबी तादाद में अब तक जवाब आ रहा है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। शशि कपूर और नंदा, एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी जरूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल गए हैं, बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसी कहानियां। कहानियां सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियां देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमजोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक ना होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए। उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने,
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: तो जीवन में मजा ही ना आए, मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूँ तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूँ। भाई ये तो बड़ी शरारत है, अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हो तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब बहुत रोते थे तो हम दोनों पति पत्नी उसको चादर पर सुलाकर उसके दोनों कोने पकड़ लेते थे और उसे झूला झुलाकर सुलाया करते थे। भाई झूले की बात बहुत हो गई है और बचपन के तोहफों की बात हो गई, पापा के घर आने की बात हो गई है, अब जरा ये बात हो जाए कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही। ये गाना सुनिए और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी।

प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपनी पत्नी से या अपने पति से इजहार करते हैं प्यार का? उम्र के किसी भी पड़ाव में प्यार का इजहार किया जा सकता है। फिल्म का नाम जरा बताइएगा।

फिल्म थी वो कौन थी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत ज्यादा शौक है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हाँ उनकी कहानियां जरूर याद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 38 साल हो गए ये कहते और दोहराते हुए, अब तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पापा डिजिटल युग में नया गीत अपनाइए। उनको समझाइए कि हम अपने युग का गीत गा रहे हैं, आप अपने युग का गीत गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाइए जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रेडियो पर विविध भारती सुन रही है और आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही है। क्या बात है भाई, हमारा कहना और बोलना सफल हो जाता है जब हमारी बात से कोई मुस्कुराए और हमारे बजाए गए गानों से किसी बात से उदास हो या प्रेरणा ले, तो हमारा प्रोग्राम करना सफल हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत ऐसी होनी चाहिए कि पिरोए गए शब्दों का आकलन सहजता से हो जाए, उस पर लिखे गए गाने खूबसूरत हैं, आज के सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारा ये दूसरा गाना पसंद का, किसी ने लिखा है चौथा गाना, किसी ने लिखा है तीसरा गाना। क्या बात है भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है जानकर कि हमारी और आपकी पसंद मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा, शुद्ध और साफ उच्चारण आवाज में सुनने को मिलेगी आपकी बातें। क्या बात है भाई, आगे लिखा है कि गुड़िया बुलबुल गुल दुनिया घटा वगैरह शब्द पर गाने होंगे और बहुत सारे इमोजी इन्होंने लगाए हैं, फूल पत्ती दिल और हाथ। तो आप बताइए कि क्या आप जब अपनी बात कहते हैं आज के जमाने में अपनों से, तो क्या इमोजी से काम चलाते हैं या अपने दिल की बात शब्दों से कहते हैं। अब सुनिए ये गाना आ रहा है कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर।

सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है हमारी आज की इबारत में ये शब्द है। तो सुनिए ये गाना और बताइए जरा गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म रतन, गीतकार संगीतकार का नाम आपको पूछना है। जोराबाई अंबाले वाली।

रतन फिल्म का गाना जोहराबाई अंबालियावाले की आवाज में, रचना थी डीएन मधोक की, संगीतकार नौशाद, और ये हमारा सवाल था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है। रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना, हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जैसे बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष की हूं। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया, और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहां पर लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं, बस अपने जज्बात का इजहार जरूरी है। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी की सुइयां तो आगे निकल गई हैं। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

और अपनी सुगंधित स्पर्श से वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। फूलों को देखकर मन में प्रसन्नता, शांति और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए फूलों को प्रकृति का मुस्कुराता हुआ उपहार भी कहा जाता है। फूलों का जीवन भले ही छोटा होता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि कम समय में भी अपने गुणों और सुंदरता से संसार को खुशियां दी जा सकती है। फूल बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं।

सुरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताजा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: आज की त्रिवेणी यहीं पर संपन्न होती है। सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और

0: कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर तरीके अपने तरीके से बात करनी है पर भारत इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रपति ना।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार।

0: समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटवन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े

0: मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गार्डन्स फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली तनी,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आपके सजन सा...

0: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
1: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
0: जी।
1: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल

0: और मिलना जुलता जुलना तो होता ही रहता है। देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
0: ऐसे अभी मौसम बदल रहा है, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है। तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही एक प्यार का मौसम भी होता है।
1: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं।
0: अरे बताओ।
1: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोहा लाइफ लेमोनेड और यूएलटीए की स्कूल की संस्थापक हैं, इनके बारे में हम बातें करेंगे
0: ठीक है।
1: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
0: इस पर हमारी बिल्ली खम्बा नोचे, अच्छा, अच्छा।
1: तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखकर भेजें।
0: लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा है उनसे हम ये कहना चाहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपके जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना, या आपके सामने खड़ा कोई इंसान या आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे।
1: बिल्कुल,
0: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट।
1: बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना। लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है।
0: चलिए सुनाइए।

0: तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरह से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं, हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं, और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर है, और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती है, जिनको कोई चुरा नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गांव है, गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी, और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है, और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं, और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती।
0: बिल्कुल, और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था, या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना, और पेड़ों पर झूलना, आदि बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ये कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है, आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई सुविधाएं आ गई हैं, रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में, कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं, घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है।

0: लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी की यादों को सजो कर रखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती है और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिएं और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
1: और हमारे साथी में देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती है। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में संजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें।
0: बहुत अच्छी बात है ना, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
1: बिल्कुल मंदाकिनी जी, और देखिए यादों की बातें करते करते हमारे पास सभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे, तो लेते हैं एक अंतराल।
0: ठीक है,

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने जोड़ अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। लेकिन हमेशा यादों में खोए रहना ठीक नहीं होता। यादों को दिल में संजो कर रखें, लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिए और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ

0: पर अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला बारह खड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा
0: जी,
1: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है, कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता, फिर उसको जब छोड़ते हैं नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने। यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है
1: जी।
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती है यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहां खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं है।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिमा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, पीएचडी शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कॉरपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक, निदेशक और जेएनयू में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रही हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी है। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक की संस्थापक वो रही हैं। पीडी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने, स्वाश पीडी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ, और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा। और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता, लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो है घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं, जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती है। खासतौर से महिलाएं जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि वे सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय तक घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल

0: जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है, चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा उतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाई तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। और सच पूछे तो मंदाकिनी जी उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहे कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी, बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे, आप पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की भी साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की चश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत शाम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन, यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुराकर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी एले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ वो भी संजो कर रखा होता था, छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल। और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़, चिप्स, कचरी, यानी क्या क्या बढ़िया है इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठाधाई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है।
1: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे, तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था, और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी, और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे, हाथ के पंखे होते थे, और खटिया, पलंग, तकिए, सिराने पर भी वो रखे होते थे,
0: आराम से मिल जाते थे, आराम से, है ना।
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता था।
0: तो ये भी एक सही, एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंथ दी हो।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी जी। लेकिन अब आते हैं हम

0: आज के दौर पर जहां बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है, कभी चश्मा यहां, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहां है सामान, कहां है मेरे मोजे, कहां है मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
1: बिल्कुल, और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उन्हें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें, तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
0: बिल्कुल, नौकरी पेशा जो महिला है ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरे, जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई है, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर की हमने सामान उठा के घर में भर लिए, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
1: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी, और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए।
0: तो मंजरी, इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है, और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
1: बिल्कुल, और हम लोग सुनते हैं गीत।
0: बिल्कुल।

0: हाँ दुबन जी, अभी हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जोड़ा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है, लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहां घर जहां लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है, और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठापटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठापटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा, बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान, या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है, या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो ये रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम, अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी, और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहां से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर, तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है, अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है, और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया, और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंबे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इस स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मन देता है और बेमतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ एक साथ लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर

0: क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: वही एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खींच किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खींच बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए। ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाजवाने बदले गाजवो, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
1: जी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहां उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही। उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है।
0: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सखी सहेली सकरे का सकरे।

आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया, कभी थपकी दी और बहलाया,

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यही से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ, पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि इसे हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
1: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है। मेरे देश में पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
0: अमवा के

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है, एक हाँ, किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित हाँ,
1: मैं जादू हूँ चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी मेंशन की हुई है। हाँ।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब, कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी।
1: हाँ, वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी।

0: और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था।
1: खराब माना जाता था।
0: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों? पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
0: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में, तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने भी नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो
1: वाह।
0: जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त।
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको,
1: जी।
0: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे और उस पर एक्टिंग भी करते थे। क्योंकि
1: वाह वाह
0: जब
1: वाह।
0: मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग,
1: अच्छा।
0: मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शीश आपको टीनेजर उनको बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है?
1: समंदर के पार है।
0: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
1: हाँ
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को यह समझ में आ गया कि उसकी
0: हाँ
1: मंजिल बंबई है।
0: हाँ तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बंबई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
1: ये जो बगावत थी नेवी
0: बगावत,
1: की, ये
0: हाँ,
1: बहुत मशहूर है
0: बहुत
1: और
0: मशहूर है,
1: इसका
0: बहुत।
1: इतिहास में दर्ज
0: बल्कि
1: है
0: ये
1: इसका
0: पहली
1: नाम।
0: बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे।
1: जी
0: क्योंकि देखिए, आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके कू बन जाता है, दे कैन बी अ
1: हाँ
0: कू।
1: बिल्कुल
0: तो दैट
1: बिल्कुल
0: इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा।
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं। तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी, मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। तो
1: अरे अरे
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी
1: हाँ।
0: ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी।
0: बहुत कम थी।
1: जी
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच ए पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं।
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल।
0: मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है

0: कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
1: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है और एक जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है,
0: जी
1: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट।
0: जी
1: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकेंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
0: जी
1: मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
0: और छोड़ दिया सबसे
1: छोड़ दिया।
0: इंपॉर्टेंट
1: हाँ,
0: बात।
1: यू आर रस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
0: अब जब
1: फॉर
0: घर आए तो क्या हाल हुआ?
1: घर आए तो फिर नेचुरली तो फिर तो इमिजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
0: जी
1: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बम्बई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
0: और बाकी
1: बाकी
0: दो
1: दूसरों का
0: बंदे
1: कुछ था, उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
0: अरे बाप रे।
1: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और उस जो पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बंबई पहुंच जाएगी,
0: हाँ।
1: और हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में जो भी 5, 10, 6 रुपया 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
0: अरे अरे अरे,
1: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, तो कल स्कूल है,
0: फिर
1: स्कूल
0: पिटाई
1: जाने के
0: हुई।
1: लिए सब शो जबरदस्त पिटाई हुई।
0: अरे अरे,
1: तो उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहां खराब हो गया गांव में,
0: यहां गलत संगत हो
1: गलत
0: गई।
1: संगत होगी इसकी,
0: हाँ
1: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में
0: स्ट्रिक्ट हो गए
1: डिसिप्लिन,
0: वहां पर।
1: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया, तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना,
1: करें
0: ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्होंने वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा। फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध और
0: दूध का शौक, मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार ये तो खूब पिटाई हो रही है, लेकिन यार दूध भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी की वजह छुप जाते थे,
1: ताकि रिंग में ना आना।
0: हाँ, वो रेंज में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए। लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइंड न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
1: अभी तक मेरे हाथ से,
0: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने,
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे

0: सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना,
1: जी
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है। और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो,
1: हाँ,
0: तो उनका हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजीशन बट आल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन गहने वहने, हाँ, खाना जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर टू थ्री फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए रावलपिंडी। पता नहीं कभी बीच पे रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डू नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, दो तीन महीने में वापस आ जाएंगे,
1: क्योंकि
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ चार पांच दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगे जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि पांच बहन है और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड टू ब्रदर्स फ्रॉम द सेकंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले, अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए,
0: वो तस्वीर ही उनकी मेमोरी थी, कि ये उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है, उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात।
0: तो मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं लिख सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है, ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी का एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना।
1: यस बिल्कुल,
0: हाँ हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी मम्मी को बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपनी मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है। हमसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता,
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से वो थी पिंडी की मिट्टी,
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो।

0: वेरी एडवेंट, मैंने बहुत उसको खोजा उनके जाने के बाद। जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे, उसमें एक बॉटल ही मुझे वापस मिली
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है।
0: हाँ, इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे
1: जी,
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग
1: दुनिया से जाने वाले।
0: आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे,
1: वो उनकी जिंदगी

0: है कहाँ।
1: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
2: जो रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
1: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े। हाँ, बड़े।
2: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
1: जी जी।
2: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
1: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
2: हाँ, मैट्रिक पास ना 8 स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में। तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे
1: जी। पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
2: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुनः शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
1: सरकार ने भेजा?
2: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र शूट नहीं किया। दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा। तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारे कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पुनः से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिए गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं। तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
1: ओके।
2: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
1: जी जी,
2: और टाइप राइटिंग सिखाई जाती है जो तब की कम्युनिकेशन थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम। सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी रिकॉर्डिंग
1: आवर, तो वो नहीं जान पाए,
2: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
1: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है।
2: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
2: वाकई में आजाद थे वो।
1: क्या बात,
2: आजाद दिल के।
1: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
2: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
1: हाँ,
2: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
1: ट्रेनिंग वहां हुई
2: 3 साल की, जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब में
1: जी जी,
2: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो हाँ, आपका गांव है।
1: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर, आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है हाँ, वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है।

0: और क्योंकि मेरा शहर है, तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा
1: लेकिन
0: लगता है
1: कमाल
0: कि
1: की बात है, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
0: तो वो
1: मतलब
0: टच
1: वो
0: नहीं करते थे।
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। ही वाज लाइक दैट
0: नहीं, लेकिन वो जो
1: उनको,
0: नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी
1: हाँ
0: उसमें तो क्या सर्किट,
1: सब कुछ। लेकिन
0: बहुत
1: एक
0: सुंदर राइटिंग
1: होता
0: में
1: ना
0: सब
1: कि
0: कुछ
1: एक
0: है।
1: फोबिया होता है, शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था। एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया। वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलता अरे अब जाना है खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिति गिति खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली, तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं, या मेरा, या माई ब्रदर, या और माई सिस्टर, और माई मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूँ, साइकोलॉजिस्ट का उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है।
0: तो एक अकेलापन आ जाता है।
1: अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी जी
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस,
1: अकेलापन में नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
0: हाँ
1: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो जख्म था, वो भरा नहीं कभी। इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की।
0: हाँ, जो आजकल नई फिल्मों में, आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी, एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज्ड दैट शी डाइड, बिकॉज़ शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ, जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी लेडीज की, बिल्कुल,
0: लेकिन वो जख्म होता है, जख्म बढ़ते नहीं, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला, और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जम मारता था, 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें, वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया उनको, उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, इसे नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये डर बाद में आया, कब आया, जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आप

0: प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में।
1: स्ट्रगल,
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको 1956
0: में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब,
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट बांद्रा स्टेशन यार माय फ्रेंड्स, यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे। क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला, रहे हम बख्शी साहब को देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते।
0: हाँ, क्यों जाते थे।
1: हाँ।
0: तो कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: जी, बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वाज अ वेरी सीरियस एटमॉस्फेयर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट इज, व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वाज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी इट वाज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे, उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सेलेंट राइटर एंड एक्सेलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, मेरे पास रेडीनेस, वो संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत।
1: हाँ, इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे, बड़े खाने के दिन,
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लेते, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, वो एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वो मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज,
1: और ये एनुअल इवेंट। इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 28-29 टाइम्स। क्यों देखा था, ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था,
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रिकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहले बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊ, मैं वहां के लिए बनाऊ।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे, मुंबई आए, साल कौन सा था,
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स, मुंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए,
1: मुंबई तो शहर ही निराला है,
0: और वापस आर्मी ने को लिया। 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स ने ही उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए, तीन महीने में वापस चले गए, और वापस आर्मी में
0: हार के, और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपति हुई कि यार बेचारा अपना सोना मुंडा वापस आ गया है, आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया ना वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमीडिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, तो
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली,
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का, तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो

0: शादी है, तेरी शादी है? हाँ, तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है। तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ,
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद।
1: हाँ, आनंद से नंद।
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा, जो कृष्ण भक्त थे वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस, ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत,
0: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं, कुछ देखना होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप? देख रहे
1: सीधे शादी तय,
0: शादी तय। और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए, ये कमाल की बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नार्कोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपजो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में

0: दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं रेस फिल्म के इस गीत से, सुनिधि चौहान और नीरज की आवाजों में।

दोस्तों अभी आपने सुना गैंगस्टर फिल्म का गीत अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाजों में। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में जुड़वा फिल्म का गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
0: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
2: जी,
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
0: जी पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।

0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
1: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए।
0: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
0: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
1: जी
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
1: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
1: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
0: सांकेन।
2: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
3: यमन भैया कहाँ हो भैया?
4: यही दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
4: अच्छा, क्या लिखा है?
3: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
5: साथियों, वल्लरी के पिता

0: वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
1: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
2: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
3: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
0: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पिता।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चाउतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
1: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
5: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
5: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है, जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?

0: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
0: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
1: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
1: जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो, चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है। क्लैप एंड स्माइल।
3: हेलो फ्रेंड्स।
4: हेलो।
3: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल। आरबीसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत,
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे FM 107.2 MHz से शाम के 6 बजने वाले ने लोहों सुनो दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही

0: देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS

0: क्षेत्रमें सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
2: लोगों सुनो सुखविंदर सिंह अते वसुंधरा दास की आवाज़ों में अक्स फिल्म का गीत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ। ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने का सरकार का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में युवा कल्याण समिति के सदस्यों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने पंचकूला में पौधारोपण किया और वन चेतना यात्रा के तहत 4 LED वैन को जिले में पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। श्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 1000 युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, प्रदेश की हर ITI में अत्याधुनिक मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने थाना सदर वल्लभगढ़ पुलिस पर एक अधिवक्ता द्वारा लगाए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को गंभीरता से लिया, IG स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं उसमें किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसमें किसानों के हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पिंजौर में विश्वविद्यालयों की युवा कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर में युवाओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ पौधारोपण भी किया और वन चेतना यात्रा के तहत 4 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये LED वैन प्रत्येक जिले में जाएगी और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगी और पर्यावरण बचाव का संदेश देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 21 राजकीय विश्वविद्यालयों के युवा केवल अपने विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि हरियाणा की युवा चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और युवाओं से वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण, नशा मुक्त हरियाणा और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में उद्देश्य, अनुशासन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए। युवाओं को कौशल में निपुण करने और रोजगार दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI द्वारा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं ताकि उद्योग की मांग के अनुसार युवा निपुण हो सकें और संस्थान से निकलती हुई उन्हें रोजगार मिल सके।
2: हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लगा

0: लगातार बढ़ रही है। हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री तो हमारे पास आ रही है परंतु उसमें काम करने के लिए स्किल युवा नहीं है। अभी कुछ आईटीआई में जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ एमओयू साइन किए, किस प्रकार का स्किल चाहिए उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो और जिस इंडस्ट्री के साथ एमओयू साइन हो रहा है समय समय पर आकर के उस आईटीआई के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा तो उससे उनको लाभ होगा और जब स्किल युवा होगा तो प्लेसमेंट भी होगी।
1: मुख्यमंत्री ने थापली नेचर कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 1000 युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। आज भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली जाने के लिए शाहबाद पहुंचे किसानों को मारकंडा पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया, जबकि अन्य रास्ते से आगे निकले किसानों ने रास्ता को जाम कर दिया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि किसानों ने इस कूच के कारण सड़कों पर आवाजाही अवरुद्ध होने से लोग परेशान है। उधर किसान प्रशासन से बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने आज शंभू बॉर्डर के पास हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा को अपना मांग पत्र सौंपा। मीडिया से बातचीत में श्री श्याम सिंह राणा ने कहा,
2: किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम उचित जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुडुनी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके शाम तक समाधान कर देंगे। हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि प्रदेश की हर आईटीआई में अत्याधुनिक मशीनरी एवं नए उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे जिससे युवाओं को उद्योगों की तत्कालीन मांग के अनुसार आधुनिक विधाओं में पूरी तरह निपुण बनाया जा सके। आज चंडीगढ़ में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक के बाद राज्य मंत्री ने कहा कि आईटीआई में आधुनिक तकनीकों के समावेश से छात्रों को न केवल बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि वे सीधे औद्योगिक क्षेत्र की मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने थाना सदर वल्लभगढ़ पुलिस पर एक अधिवक्ता द्वारा लगाए गए अवैध हिरासत, हिरासत में मारपीट और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को गंभीरता से लिया है। आयोग ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि आईजी स्तर के अधिकारी से जांच करा के विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने अपने आदेश में कहा है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के तहत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला होगा। उन्होंने कहा कि बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना, उसके साथ मारपीट करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना कानून के शासन के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता अधिवक्ता मोहित दलाल के अनुसार 2 जुलाई की रात चंदावाली चौक पर दस्तावेजों की जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। बार काउंसिल का पहचान पत्र दिखाने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत में आरोप है कि उन्हें और उनके साथियों को थाना सदर वल्लभगढ़ ले जाकर पूरी रात हिरासत में रखा गया, मारपीट की गई तथा करीब 12 घंटे बाद लिखित माफीनामा लेने के बाद रिहा किया गया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित हो सकते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि एचरेट का परिणाम लगभग तैयार है, केवल प्रश्नों पर आपत्तियों को लेकर माहिरों की समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने पर प्रश्नों पर आई आपत्तियों का हल निकाला जाएगा। कृपांक दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह माहिर समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। पलवल जिले में पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 30 जुलाई से 11 अगस्त रात तक जिले में संबंधित नागरिक उपमंडल अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर स्थापित नहीं कर सकेगा। अनुमति मिलने पर शिविर केवल दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर मुख्य सड़क से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही

कांवड़ शिविरों के बीच न्यूनतम 2 किलोमीटर की दूरी रखना भी आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने का सरकार का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में युवा कल्याण समिति के सदस्यों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने पंचकूला में पौधारोपण किया और वन चेतना यात्रा के तहत 4 LED वैन को जिले में पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। श्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 1000 युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, प्रदेश की हर ITI में अत्याधुनिक मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हम तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों से विरोधी धिर के वलों हंगामे कारण कल तक लई मुलतवी की गई। पंजाब विधानसभा का मानसून अजलास 3 अगस्त को शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने पुलिस स्टेशन सदर मोगा विखे हुए ग्रनेड हमले च शामिल 3 औरतों समेत 17 मुलजमान को 1 IED विस्फोटक समग्री इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से असली समेत काबू किया। जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने समराला के पिंड पुनिया विखे 1.10 करोड़ रुपए की लागत तैयार की गई लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। पंजाब के समाजिक न्याय अधिकारिता घट गिनती विभाग वालों ऐसे विद्यार्थियों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बकाया राशि प्राप्त करने 15 अगस्त तक चालू बैंक खात्या आधार जोड़ने की अपील। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ च दरमियाने तो भारी बारिश होने की संभावना जताई। गुरदासपुर लगातार मीह कारण रावी दरिया च पानी का पद्धर वध्या। मकौड़ा पत्तन से किश्ती सेवा बंद हुई। 6 तो बाद पिंडां दा संपर्क टुटिया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों से विरोधी धिर वालों हंगामे कारण दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। दोपहर 2 बजे तो बाद दोनों सदनों की कार्रवाई मुड़ तो शुरू हुई। इस मगरों विरोधी धिर के मैंबरों वालों हंगामा जारी रहा। हंगामे कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक लई मुलतवी कर दी गई। इस तो पहला जदों लोकसभा ने पहली मुलतवी तो बाद दोपहर 12 बजे अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू की थी तो हंगामे के दरमियान वख-वख संसदी कमेटियां दीयां चोणां लई मते पेश किए गए। प्रिजाइडिंग अफसर संध्या राय ने मैंबरों नूं अपनियां सीटां ते वापस जाण ते सदन नूं सुचारू ढंग नाल काम करन देण दी अपील की थी। उन्हें कहा कि सिफर काल मैंबरां दा है ते पूरा देश इस कार्रवाई नूं देख रहा है। उन्हां दी अपील के बावजूद विरोधी धिर के मैंबरां ने सदन के केंद्र च हंगामा किया। नीट अते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। पंजाब विधानसभा का मानसून अजलास 3 अगस्त को शुरू होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज चंडीगढ़ विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए दसिया कि पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग दौरान यह फैसला लिया गया है।
1: कैबिनेट की मीटिंग हुई है ते मानसून सैशन जेड़ा पंजाब विधानसभा का 3 अगस्त तो 10 अगस्त तक होगा जिदे च लोक पक्षी कई ऑर्डिनेंस भी ने कई बिल भी ऐसे ने ते उन्हां ते फैसला होगा।
0: सूबे विच नवे बन रहे 10 लाख राशन कार्डां बारे वेरवे सांझे करदे मुख्यमंत्री ने दस्या
1: 10 लाख राशन कार्ड नवे बन रहे ने। ये वो ने जिन्हां नूं 5 किलो कणक हर महीने पर हैड मिलती है। मेरी रसोई योजना जिहड़ी है 2 लाख तो जारी रहेगी। एक वैबसाइट भी है उहदे ते जाके अपना तुसी कार्ड बना सकते हो। 100% ट्रांसपेरेंसी, नो कैश नो फरमैश, कोई सिफारिश नहीं चलूगी। सेवा केंद्रां च भी जा सकते ने, फूड सप्लाई के दफ्तरां च भी अर्जी दे सकते ने। SMS राही रसीद मिलूगी। पहला मैनुअल वेरीफिकेशन हुंदी सी, उच्च मनमर्जी हुंदी सी ते भ्रिष्टाचार की संभावना ज्यादा रहिंदी सी। हुण डिजिटल वेरीफिकेशन ते ट्रैकिंग होगी जिहदे च कोई पक्षपात नहीं होगा।
0: मोगा पुलिस ने बीती 8 जुलाई नूं सवेर नूं पुलिस स्टेशन सदर मोगा विखे हुए घट तीबरता वाले ग्रनेड हमले विच शामिल 3 औरतों समेत 17 मुलजमान नूं गिरफ्तार करके एक संभावी दहशतगर्दी साजिश नूं नाकाम कर दिता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों विच हमले के 3 मुख साजिशकर्ता शामिल ने। उन्होंने कब्जे विचों 1 IED दे नाल नाल विस्फोटक समगरी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 1 पिस्तौल ते 1 मैगजीन भी बरामद किया गया। हमले नूं अंजाम देने वास्ते वरत्या गया दुपहिया वाहन भी

0: द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अभी आपने इस फिल्म से देशभक्ति गीत सुना। आवाजें सुखविंदर सिंह और एआर रहमान की थी, बोल समीर के, संगीत एआर रहमान का। अब सुनिए देशभक्त भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अभी आपने सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का था। जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए एमएम करीम के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज अलका याग्निक की, फिल्म का नाम जख्म।

फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत अनु मलिक का, बोल जमीर काजमी के।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी
2: हाँ बिल्कुल आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है
2: याद रखिए आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी

0: घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया।
3: जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए किशोर कुमार का गाया बॉम्बे टू गोवा फिल्म का गीत, बोल राजेंद्र कृष्ण के संगीत आडिबमन का।

0: रुमान।
1: बॉम्बे टू गोवा, अभी आपने इस फिल्म में किशोर कुमार को सुना। अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार अनजान।

जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश बप्पी लहरी और एस जानकी के स्वर में साहिब फिल्म से, संगीत बप्पी लहरी का, बोल अनजान के।

0: महल कार्यक्रम में आज सुधा जौहरी की लिखी नाटिका सुनिए, चूहा प्रकरण। निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: मैडम, आप इसी फाइल के वास्ते हमको बोला था ना?
2: हाँ नैंसी, थैंक यू। एक जरूरी कागज देखना था।
1: मैडम, ऑफिस का हाल एकदम खराब है, उधर अलमारी में तो
2: एक मिनट, जरा मैं ये फाइल देख लूं।
1: वही तो हम आपको बोलता मैडम कि फाइल के अंदर।
2: प्लीज नैंसी, जस्ट अ मिनट।
1: ओह नो मैडम, इस फाइल के तो सारे कागज चूहा काट गया।
2: वही तो हम इतनी देर से बोलने को चाहता था मैडम, अलमारी का सारा कागज चूहा एकदम चूरा बना दिया।
1: ओह, ये तो बड़ा नुकसान हो गया।
2: यस मैडम,
1: अब हमारे रिकॉर्ड्स का क्या होगा?
2: अब वो तो चूहा का पेट का अंदर गया। स्पेशल डिश।
1: विल यू शट अप मिस नैंसी फर्नांडिस?
2: सॉरी मैडम।
1: माना कि हमारा ये पीड़ित प्राणी कल्याण केंद्र हमारा प्राइवेट कंसर्न है।
2: यस मैडम।
1: कोई कुछ पूछने वाला नहीं।
2: नो मैडम।
1: पर रिकॉर्ड्स तो होने चाहिए ना?
2: यस मैडम, यस यस मैडम।
1: अब इस चूहे का कुछ ना कुछ करना ही होगा।
2: यस मैडम।
1: नैंसी, ये आता किधर से है?
2: ये किधर से आता होगा?
1: मैडम, अपना टॉप क्लास बिल्डिंग का खिड़की दरवाजा तो इतना टाइट बंद होता कि चींटी तक नहीं आने को सकता।
2: तो फिर चौकीदार दरवाजा खुला छोड़ देता होगा।
1: यस मैडम।
2: जरा बुलाओ तो।
1: अब यस मैडम, उसका तो कोर्ट मार्शल करना मैडम। अब शेरश्री
3: जी, मैं साहब
1: इधर आओ, तुमको इनको मेरे साथ बुलाता।
2: उफ नैंसी, तुम कितना बोलती हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो क्या नाम है उसका?
1: माइकल।
2: हाँ हाँ, माइकल। माइकल का तो तुम्हारे बोलने से भेजा फट जाता होगा।
1: नो मैडम, नो। अरे मैडम, वो तो हमारी आवाज पर मरता है। मैडम, आप एक बार दोस्ती बनाकर देखो ना किसी अच्छा लड़का से।
2: फिर वही बात। अब मैं तुमसे हजार बार कह चुकी हूँ कि मुझे दुखिया प्राणियों की सेवा करनी है।
1: यस मैडम, यस।
2: ये दोस्ती वोस्ती या शादीवादी के चक्कर में नहीं पड़ना।
1: नो मैडम।
3: मेम साहब,
2: लो शेर सिंह आ गया। शेर सिंह
3: जी। मेम साहब,
2: तुम दफ्तर की कोई खिड़की या दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ देते?
4: सवाल ही नहीं मेम साहब, एक एक दरवाजा खिड़की लटक लटक कर खींच खींच कर देखता है मेम साहब, टेस्ट करता है।
2: फिर वो अंदर कैसे आता है?
4: मेम साहब, आपको भी पता है वो आता है।
2: कहाँ क्यों रहे हो? कौन आता है?
4: भूत मेम साहब, भूत।
1: भूत नहीं, इधर चूहा आता, चूहा।
4: भूत नहीं, भूत नहीं, चूहा, चूहा। अभी बात है उसको, क्या है चूहा?
2: शेर सिंह, ये पीड़ित प्राणी कल्याण केंद्र है, यहाँ जीव हत्या नहीं होगी।
4: सॉरी मेम साहब, सॉरी मेम साहब, पर ये चूहा आता किधर से मेम साहब?
1: यही तो पता लगाने को मांगता, अब जाओ ढूंढो।
4: अच्छा मेम साहब, अभी ढूंढता है।
2: बुद्धू है बिल्कुल। ओफो, मेरा पेन गिर गया,
1: अलमारी के नीचे लुढ़क गया मैडम। अब हम अभी निकालता। ये बहादुर मैडम एक नंबर का आलसी कामचोर है। देखो कितना कचरा अलमारी के नीचे, कभी झाड़ू नहीं मारता। मैडम, मैडम, मैडम,
2: क्या हुआ?
1: चूहा का बिल मैडम, कितना बड़ा छेद। अरे दीवार का इस बाजू से उस बाजू तक। अरे हाँ, इसका मतलब चूहा उधर से आता है।
2: अब मैडम,

0: नहीं नैन्सी, अगर चूहा इधर कहीं छिपा है तो इधर ही रह जाएगा।
1: मैडम, अगर हम पीछू वाला दफ्तर को शिकायत का लेटर लिखे तो?
0: हाँ ये ठीक है, चिट्ठी में लिखो कि उनकी लापरवाही से हमारे डॉक्यूमेंट्स को नुकसान पहुंच रहा है।
1: यस मैडम।
0: चूहे का कोई इंतजाम करें।
1: ये देखो पीछू वाले ऑफिस का ये कटा फटा सब बिल और टेंडर्स।
0: अरे
1: देखो मैडम।
0: अरे हाँ, कौन से ऑफिस का नाम लिखा है?

0: बिच्छू वाले ऑफिस का ये कटा फटा सब बिल और टेंडर्स।
1: अरे
0: देखो मैडम।
1: अरे हाँ, कौन से ऑफिस का नाम लिखा है?
2: जीव संरक्षण कार्यालय।
1: यस मैडम।
2: वहां तो बड़ी ढूंढ बची होगी इनकी।
1: यस मैडम।
2: कमाल है, दोनों दफ्तरों के बीच सिर्फ एक दीवार है, पर ना वे हमारे बारे में कुछ जानते हैं ना हम उनके बारे में।
0: कैसे जानने को सकता मैडम, हमारा रास्ता सामने वाला रोड से है और उनका पीछू वाला लेन से, बस बीच में एक दीवार ही तो है।
2: अच्छा नैंसी, तुम वो लेटर लिखो।
1: यस मैडम।
2: और शेर सिंह।
3: जी मैम शाह।
2: तुम ये अलमारी उधर कोने में सरका कर यहाँ सफाई करो।
3: अच्छा मैम शाह।
2: उस दफ्तर के कागज में पिन मैं लगा देती हूँ। मिस नैंसी।
0: यस मैडम।
2: जरा चिट्ठी लिखकर मेरे दस्तखत करवा लेना।
0: ओके मैडम।
2: और शेर सिंह।
3: जी मैम शाह।
2: ये चिट्ठी और ये कागज उधर ले जाकर वहाँ के साहब को दे देना।
3: जी।
2: कह देना कि पीड़ित प्राणी कल्याण केंद्र की संचालिका ने भेजे।
3: मैम साहब, इतना चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, अगर आप कहें तो जैसे चूहा उधर से इधर कागज करता है, हम भी इधर से ये कागज उधर सरका दे। मैम साहब।
2: शेर सिंह बहुत सुस्त हो तुम, जरा सा चक्कर लगा कर जाने में खिस नहीं जाओगे। ये रहे बिल और टेंडर्स, ये तुम्हें ले जाने।
3: अच्छा मैम साहब।
0: मैडम ये चिट्ठी तैयार है।
2: ऑल राइट, ठीक है। शेर सिंह।
3: जी मैम साहब।
2: ये लेटर भी लेते जाओ।
3: अच्छा मैम साहब।
4: अभी गया और अभी दे के आया।
5: मैं पूछता हूँ अजीज मियाँ, ये ऑफिस है या जादूगर का स्टेज? हर चीज यूं गायब हो जाती जैसे हवा में उड़ गई हो।
6: हुजूर मेरी तो खुद अकल हैरान है, बैंक ड्राफ्ट मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से आपके लेटर पैड के नीचे रखा था, टेंडर्स भी क्या कहते हैं बेहद संभाल कर मेज पर रखे थे, आखिर जमीन निकल गई या आसमान खा गया?
4: शायद मैं आ सकता हूँ?
6: हाँ आओ, कहो क्या बात है?
4: शायद आपकी इस दीवार के पीछे उधर हमारा ऑफिस है, हमारी मीम शाह मिस इंडो न्यूरोलॉजी ने ये चिट्ठी और ये कागज भिजवाए हैं साहब।
6: कागज?
4: जी साहब।
6: ये कटे फटे कागज? अरे अरे, ये तो क्या कहते हैं अपना बैंक ड्राफ्ट है। हुजूर टेंडर्स ये रहे और ये सब वो कागज हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। पर चौकीदार।
4: जी साहब।
6: ये तुम्हारे दफ्तर में कैसे पहुंचे और इनकी ये हालत कैसे हुई?
4: शायद चूहा ले गया था।
6: चूहा?
4: चूहा? हाँ साहब, हमारे हिंदू मेम साहब ने चिट्ठी भी दी है साहब।
6: चिट्ठी?
4: हाँ साहब।
6: देखो।
4: देखिए साहब।
6: लो अजीज भैया, तुम भी पढ़ो।
7: हाँ। तो ये इन जनाब चूहे साहब की कारगुजारी है, इन्होंने तो क्या कहते हैं बड़े बड़े स्मगलरों के कान कतर लिए, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। अरे वाह, वो सभी लूट ले गए, हमें खबर भी ना हुई।
6: अजीज मियां शायरी छोड़ो और ये बताओ करना क्या है?
7: ये लोग खुद कुछ इंतजाम क्यों नहीं करते? अरे इनकी भी तो 50% जिम्मेदारी है।
4: शायद मैं तो चूहा मार देता, पर मेम साहब दुखी होकर बोला कि ये पीड़ित प्राणी कल्याण केंद्र है, किसी प्राणी को सताना ठीक नहीं है।
6: वाह, क्या ऊंचे विचार है तुम्हारे इंदू जी के।
4: हाँ साहब, उन्होंने तो शायद शादी भी नहीं की, अपना सारा जीवन सेवा के लिए, और उसको क्या कहते हैं साहब, हाँ समर्पण कर दिया साहब।
6: समर्पण नहीं, समर्पित।
4: साहब वही वही।
7: अरे हमारे साहब चंद्रदत्त जी भी कम नहीं है, इन्होंने भी ना शादी की है न इरादा रखते हैं।
4: अच्छा साहब।
7: बस काम ही काम, अरे वही जीव जंतुओं की सेवा।
6: हाँ तो बताओ क्या करें इस चूहे का?
7: बड़ी टेढ़ी चीज है केबला।
6: फिलहाल तो तुम ऐसा करो, एक पत्र बनाकर लाओ कि हम इसका कोई तरीका सोच रहे हैं। मैं साथ में एक पर्सनल लेटर ऑफ थैंक्स भी भेज दूंगा।
7: ठीक है, बस मैं यूं गया और यूं लाया।
6: सुनो।
4: जी साहब।
6: तुम्हारा क्या नाम है?
4: शेर सिंह।
6: अच्छा शेर सिंह।
4: जी साहब।
6: तुम ऐसा करो कुछ देर में आना।
4: साहब मैं उधर अकेला कर्मचारी हूँ सर, सफाई करना, पानी भरना, दौड़ भाग करना, चौकीदारी करना।
6: बस बस बस, तो फिर क्या करोगे?
4: साहब आप चिट्ठी उसी चूहे वाले बिल से उधर सरका देना सर।
6: अरे हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
4: अच्छा साहब। राम राम साहब।
6: राम राम।
4: मेम साहब।
2: आओ आओ शेर सिंह, जवाब लाए।
4: मेम साहब बहुत देर लगाते थे, मैंने कहा देरी होगी तो बोले तुम जाओ, हम उस छेद में से सरका देंगे। उन्होंने चिट्ठी सरका दी। मेम साहब देखिए।

0: ये तो नैन्सी को दे आओ।
1: अच्छा मनीषा,
0: और ये पत्र मेरे नाम, पढ़ूं क्या लिखा है? माननीय इंदु जी, आपका अत्यंत आभारी हूं व आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूं। कृपया चूहा समस्या सुलझाने हेतु सुझाव लिखकर इसी बिल में से सरका दें। पत्र की प्रतीक्षा में, चंद्रदत्त। क्या जवाब लिखूं? कुछ तो लिखना ही होगा। आदरणीय चंद्रदत्त जी, मैं इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं। दुखियों की सहायता करना तो एक मानव धर्म है। हाँ, चूहा जब आपकी ओर हो तो कृपया बिल बंद करवा दें। इंदु नरूला।
2: इंदु जी, बिल बंद करवाने से तो आपके साथ विचार विमर्श में विघ्न पड़ेगा। कोई और तरीका सोचिए। आपके दुखी प्राणियों के कल्याण हेतु किए प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। मेरे योग्य को सेवा हो तो कहिएगा। आपका चंद्रदत्त।
0: आप तो यूं ही प्रशंसा करके शर्मिंदा करते हैं। मैंने तो सुना है आपने जीवन इसी कार्य में लगा दिया। आप कितने महान हैं इंदु।
2: इंदु जी, कभी आइए ना, आपसे बातें करने को जी चाहता है। आपका चंद्र।
0: मुझे आने में संकोच सा होता है, आप ही आइए ना इंदु।
2: कल शाम 4 बजे तैयार रहिएगा, आपके ऑफिस आऊंगा, फिर कॉफी हाउस चलेंगे। आपका चंद्र।
3: क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रही हैं?
4: तुम किधर से बोलता?
3: घबराइए मत, हम तो दीवार के इस तरफ से चूहे के बिल में से बोल रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? चीख की आवाज सुनकर क्या कहते हैं रह ना सके, और फिर भी चीख एक मोहतरमा की।
4: ओ मैन, हमको तो इधर से सिर्फ तुम्हारा मूछा चश्मा दिखता, हम बहुत परेशान हैं।
3: अरे फरमाइए ना क्या बात है।
4: अब कौन फरमाता रमाता नहीं है, सीधी बात बोलता, तुम्हारा चूहा तेरे को क्यों आता? हाँ, चूहा से बहुत डरता, तो उसको बंद करके जंगल में फेंकर आ।
3: अरे अरे अरे, क्यों इस मासूम बेजुबान नन्नी जान के पीछे पड़े हैं आप? अरे ये तो मोहब्बत का फरिश्ता है, फरिश्ता।
4: You are right.
0: देखो, शायद वो लोग आता है। हम जाता है।
3: आता है। आता है।
0: बैठिए ना।
2: एक बात करना चाहता हूं।
0: कहिए।
2: जब हम दोनों की एक ही मंजिल है तो अलग अलग रास्ते क्यों?
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
2: हाँ इंदु, अगर हम एक ही राह पर हम सफर बनकर चले तो।
0: ओह चंद्र।
2: इंदु,
5: एक्सक्यूज मी मैडम,
6: ये देखो चूहा अपने आप डब्बा में गिरा और फंस गया। ये रहा डिब्बा।
0: अरे वाह, अब इस चूहे का क्या करें?
7: क्या करें? अरे इसी चूहे ने तो हमारी मुलाकात कराई है।
6: यस सर।
7: हम इसे बिस्कुट खिलाएंगे।
6: और सर, शादी का लड्डू भी खिलाएंगे ना?
0: ओ नैन्सी, तुम बात बोलती हो।
8: चूहा प्रकरण, ये नाटिका अभी आप सुन रहे थे। लेखिका सुधा जौहरी, निर्देशक सुशील बैनर्जी। ये हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश दिल क्या करे इस फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम का गाया अनाड़ी फिल्म का गीत। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: रहे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।

0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
1: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
2: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बसाव अभियान में तेजी लाए जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बसाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ

0: बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारत

है देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के गाए युगल गीत से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म का नाम रोमांस।

अभी आपने लता मंगेशकर और अमित कुमार को फिल्म रोमांस में सुना, दिल है कि मानता नहीं। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में, बोल समीर के आवाज, अनुराधा पौडवाल की।

अभी आपने किशोर कुमार और साथियों को मोहब्बत फिल्म में सुना। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, फिल्म का नाम लवर्स।

सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए और यह है कार्यक्रम के अंतिम पेशकश गुलाम फिल्म से। तर्ज बनाई है जतिन ललित ने, रचनाकार हैं समीर, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: सानू और अलका याग्निक को सुना। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: किसने कहा है? किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल।
1: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस

0: मूल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में, वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: जब पार्टीशन में हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
0: जरूर।
1: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई, इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
0: क्या बात है।
1: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा,
0: जी जी,
1: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
0: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले, इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती के हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि

0: पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारतीय जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
1: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
0: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलेन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमक हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई और जो राजकोर साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
1: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
0: यस यस।
1: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
0: हाँ, वो बख्शी साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जी ओम प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तो मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया आया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, तो उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ वहीं, यहाँ कोई आता जाता नहीं।
1: क्या बात,
0: तो ये वहां से वो बात निकली।
1: अच्छा,
0: गाना है अपना, एक बार सुभाष भाई साहब आए थे घर पे
1: जी,
0: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी भाई साहब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब नहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए, उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी, मतलब रुक रुक रुक लिखना है मुझे, और उन्हें एक कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम,
1: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
0: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर।
1: ओहो,
0: तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी के गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना मेरे हम सफर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं, इनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्शी साहब ने वापस गाड़ी रोक दी, रुक रुक रुक मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने कुछ अपने उनके पास, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सिगरेट पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइने, बंसरे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। तीन चार छह महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली दो हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी और मैंने ये गाना लिखा था तब, कि रुक तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68 64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब पुलगुलिया रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना

0: गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड. तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना. काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे आते थे. तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके. तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माय ब्रदर, टू माय सिस्टर. लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था. जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिर नहीं करते थे वो छोटा कोई लोरी सुना या कुछ. तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे. मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था, उनकी लोरियों का. दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने. तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है इस अंडे का भाव क्या है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो. तो इस की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले. तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माय फादर वाज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 इयर्स ऑफ हिज करियर इन द बिगनिंग.
1: बिल्कुल.
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में. तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना.
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो.
1: क्या बात है.
0: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी,
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी. तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्व नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो. तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया. मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोलो कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
1: जी.
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है. काम में और शौक में फर्क होता है. वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता. अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है.
1: क्या बात है. अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है.
1: मैं समझ सकता
0: हूं. मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, यू नो, विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था. तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था. तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कोई लफड़ा वड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? दूसरा मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
1: जीत
0: चाहेंगे हम अगर तू संग है. क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवेड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए. तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: क्या बात,
0: ऐसा ही गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है. और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो.
1: क्या बात है, क्या बात.
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता. तो बख्शी साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे.
1: क्या बात.
0: लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो. तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है. मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए.
1: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया.

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बचते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा।

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन

साक्षी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। बिसरता नहीं वो वक्त, बिसरता नहीं वो चेहरा, भूलती नहीं वो आंखें जिनमें थी मोहब्बत की नदी। उठाए उन्होंने जो पलकें तो धूसर बादल आसमानी हो गए। कहा उन्होंने जब कुछ तो पहाड़ों पर उतर आई नरम धूप। जब एक दूसरे की नजरें मिली तो सैकड़ों फूल एक साथ खिल गए। चांद की परछाई ने धरती को रोशन कर दिया।

बोलती आंखें, वो आंखें झील हैं, वो आंखें पहाड़ों के बीच जंगलों पर खिले फूल हैं, जिसकी खूबसूरती विरले ही जान पाते हैं। उन आंखों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं, कह गई आंखें बहुत कुछ।

से बह चली जज्बात की नदी, उनके आने से पत्थर पिघल गए, उनके आने से बर्फीले पहाड़ संगमरमर की चादर ओढ़कर मुस्कुरा उठे, चंचल झरने लयबद्ध होकर झरने लगे, उनके आने से मन पर छाई धुंध छट गई।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। कहीं टूट न जाए इंतजार की माला, कहीं रह न जाए इंतजार अधूरा। ओ चांद कहना उनसे कोई है जो बाट जोहता है, न जाने कितनी प्यार करने वालों का साझेदार रहा है ये चंद्रमा। चंद्रमा से दुनिया के न जाने कितने लोगों ने साझा किए अपने मन के भाव। ये चंद्रमा सबका संदेशा ले जाता है, चंद्रमा से कहो जाकर कहते उनसे वो सब कुछ जो कह नहीं सके होठ।

जिंदगी में किसी का आना बड़ा मानी खेज होता है। जिंदगी में किसी के आने से जाग उठते हैं अरमान दिल के, किसी के आने से जाग उठते हैं सोए हुए जज्बात, किसी के आने से मौसम रंगीन हो जाता है, बरसों बरस की खुशियां एक पल में हासिल हो जाती हैं किसी के आने से, किसी के आने से ख्यालों में रंग ही रंग भर जाते हैं।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸਟੈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 24 ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22-23 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: तलो हुन सुनो पंजाबी की तरह सजा प्रोग्राम सोच सांझ। शुरुआत करते हैं जैसमिन सैंडलेस, गुलेज अख्तर, निशिता अते रबिका दे गाए इस गीत के नाल।

0: टू एसबीआई प्रीमियर बैंकिंग जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो शर्तां लागू
1: लोहन सुनो जोबन संधू नूं

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो ऐसे ले तुसी सुन रहे हो पंजाबी की तरह सजा प्रोग्राम सुर सांझ। तिलो हुण सुनो मनी औजला अते यो यो हनी सिंह नू।
4: इश्यू, इश्यू, मनी औजला।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: सुनो प्रीति वादवा का गीत।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ਜੀਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए।

0: विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से। 11:05 हो चुके ने, हुण साडी अज दी सभा खत्म होंदी है। सवेरे 5:55 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।